सुप्रभात। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाय बसा केंद्र है। आज शनिवार है, सक संवत 1948, भाद्रपद माह की तिथि 28, तदनुसार 19 सितंबर ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश शामिल होंगे। विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसमें 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर कल जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत के कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर भी श्रम बाजार के विवरण जारी किए हैं। लगभग 57.8% जिलों में महिलाओं की श्रम भागीदारी 40% से अधिक है। सबसे अधिक आबादी वाले 50% जिलों में श्रमिक जनसंख्या दर 37.3 से 76.7% के बीच रही है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी योगदान के उपयोग को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित एलआईसी निवेश धोखाधड़ी के मामले में मुंबई स्थित रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, इसके पूर्व अध्यक्ष और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की शिकायत के आधार पर किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने आंध्र प्रदेश के डुग्गा राजपट्टनम में नया ग्रीनफील्ड शिपयार्ड विकसित करने के लिए नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MDL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है। 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन तजिंदर पाल सिंह तूर इस उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 20th Rozgar Mela today through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on this occasion. This Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly appointment candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, Ministry of Defence, among others. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Court, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in this event. Representatives from state judicial academics,

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है।

भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। सुनते हैं वीणा सहस्रबुद्धे के स्वर में ये भक्ति गीत।

अनुप जलोटा के स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब आपको आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। 6:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। कलाकार होंगी मृणालिनी अखौरी और सुबह 7 बजे समय होगा जोहार चाईबासा कार्यक्रम का, जिसमें आपको कुछ सदाबहार गीतों के अलावा कुछ जानकारियां भी देंगे। और समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 8:30 पर प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। 8:40 पर माटी की महक कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे संथाली लोकगीत। सुबह 9 बजे समय होगा कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में जानकारी की बातों के अलावा आपको बताएंगे आज के विशेष दिवस के बारे में। और 9:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाएंगे 10 बजे से 10:30 तक कुछ बॉलीवुड फिल्मी गीत। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। तो श्रोताओं, अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुनते हैं मृणालिनी अखौरी के स्वर में।

आकाशवाणी के इस सुहाने प्रातःकालीन कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। जोहार चायबासा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का जोहार। श्रोताओं, सुबह की ठंडी सी हवा, आसमान में बादलों की हल्की आवाजाही, चारों ओर प्रकृति की ताजगी और मन में भक्ति और संगीत के मधुर स्वर। श्रोताओं, आज का दिन भी विशेष है। आज राधाष्टमी का पावन अवसर है। यह दिन जब श्रद्धालु राधा रानी के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना से भर उठते हैं। राधा का नाम लेते ही मन में प्रेम, करुणा, माधुर्य और भक्ति की भावना जाग उठती है। दोस्तों, तो क्यों ना आज सुबह की शुरुआत एक ऐसे विचार से करें जो पूरे दिन हमारे साथ रहे। जिस मन में प्रेम, विश्वास और संतोष होता है, वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ भी जीवन को उत्सव बना देती है। दोस्तों, जीवन में हम सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कुछ चीज़ें हमें मिलती है, कुछ छूट जाती है और कुछ के लिए हमें इंतज़ार भी करना पड़ता है। लेकिन यदि मन में विश्वास बना रहे तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। चिंता कम और विश्वास ज़्यादा रखें और कोशिश करें कि आपके शब्द किसी का दिल न दुखाएं। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया, हसरत जयपुरी का लिखा अनु मलिक के धुन पर फिल्म राधा का संगम का ये गीत। राधा कृष्ण का प्रेम हमारे भारतीय संस्कृति में न केवल प्रेम की कहानी बल्कि भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। और आज की इस पावन सुबह में जब चारों ओर राधाष्टमी की भक्ति का वातावरण है, तो संगीत भी और कुछ मधुर ही होता जा रहा है। तो श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का गाया गीत अभी आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म सौदागर से। सुबह का समय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। दिन की शुरुआत अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर करें और मौसम अनुकूल है तो थोड़ी देर व्यायाम भी कर ले तो और भी अच्छा हो सकता है। नाश्ता बिल्कुल भी ना छोड़ें और अपने भोजन में मौसमी फल सब्जियों को ज़रूर शामिल करें और बारिश के मौसम के बाद वातावरण में नमी बनी रह सकती है, इसलिए गीले कपड़ों में ज़्यादा देर तक ना रहें और अपनी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने कार्यक्रम में भी आगे बढ़ते हैं और सुनवा रहे हैं आपको अगला गीत।

0: समुंदर फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार का गाया।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सबों का फिर से स्वागत है और आप सुन रहे हैं जोहार चाईबासा कार्यक्रम में कुछ बॉलीवुड गीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा रिश्तों की। आज आप एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, अपने माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन कीजिए जिससे कि आपकी कई दिनों से बात नहीं हुई है। कभी कभी केवल इतना पूछ लेना आप कैसे हैं किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। रिश्तों के बड़े हमारे रिश्तों को बड़े बड़े उपहारों से ज़्यादा ज़रूरत होती है समय की, सम्मान की और अपनापन भरे शब्दों की। तो श्रोताओं, सुनवा रहे हैं इसी एहसास के साथ अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना नीरज के बोल एसडी बर्मन के धुन पर किशोर कुमार के आवाज़ में गाए फिल्म प्रेम पुजारी के इस गीत को। श्रोताओं, सड़क पर निकलते समय आप कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। दो पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं, कार में सीट बेल्ट पहने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित घर लौटना। और सुनवा रहे हैं एक ऐसा गीत जो जीवन के सफ़र की खूबसूरती को महसूस कराता है। जिंदगी भी तो एक सफ़र ही है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश और कभी सुहानी सुबह। और इसी सफ़र के साथ चलते हैं इस गीत की ओर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रीति उत्तम और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत उत्तम सिंह के धुन पर फिल्म गदर से। दोस्तों, बारिश के बाद जब धरती हरी हो जाती है, पेड़ पौधे धुलकर और सुंदर दिखाई देने लगते हैं, तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। आज यदि आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है तो कुछ क्षण उसके पास जरूर बिताइए। प्रकृति हमें यह सिखाती है कि बदलाव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हर मौसम में अपना रूप बदलते हैं, लेकिन बढ़ना नहीं छोड़ते। हमें भी परिस्थितियां बदलने पर अपने भीतर उम्मीद जरूर बनाए रखनी चाहिए। और इसी खूबसूरत सुबह में सुनवा रहे हैं आपको एक और सदाबहार गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर फिल्म आक्रमण से।

0: मारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना।
1: और इसी मौसम का आनंद लेते हुए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत, आज और कल से मोहम्मद रफी का गाया।

सुनो, आपके साथ इस संगीत यात्रा में समय कितनी तेजी से गुजर रहा है पता ही नहीं चला। अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे अनमोल विचार के बारे में। जिस दिन हम दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जीवन में हमारी सच्ची प्रगति शुरू हो जाती है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का समय अलग है, हर किसी की मंजिल भी अलग है। बस अपनी राह पर चलते रहिए। और चलते चलते सुनवा रहे हैं आपको फिल्म आन मिलो सजना का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर।

0: नर्सों नहीं, नर्सों।
1: कहाँ?
0: यही, यहाँ कोई आता जाता नहीं।
2: इस गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए चलते हैं आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
3: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
4: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
0: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
6: The government is supporting the sector through technology transfers.
7: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
0: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
8: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
7: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
9: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा, दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
10: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मूडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मॉनसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।
11: Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. The Prime Minister will also address the newly selected candidates on the occasion. More details from our correspondent.
2: The 20th Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The newly recruited candidates will be joining various ministries and departments of the Government of India, including Ministries of Finance, Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare and Defence, among others. With the 20th Rozgar Mela, a total of about 12,75,000 youth will have received appointment letters. The Rozgar Mela reflects the government's continued focus on creating employment opportunities for the youth and ensuring their greater participation in the country's development journey. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashvani News, Delhi.
11: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics today in New Delhi. The two-day conference is being organized by the National Green Tribunal. It will bring together environmental experts, judges of the Supreme Court and High Courts, and district court judges. Secretaries of various ministries and senior government officials will also participate in the event. Representatives from state judicial academies, state legal services authorities, state expert appraisal committees, state environment impact assessment authorities, and state wetland authorities will attend the conference. The conference will provide a platform to discuss key environmental and climate challenges. These include gaps in policy formulation, implementation, and enforcement. The conference will also explore ways to strengthen environmental governance and institutional cooperation. Statistics and Program Implementation Ministry has released labor market snapshot of selected districts. The district-level key labor market indicators were released by National Statistical Office for the first time. Around 57.8% of districts recorded female labor force participation rate, LFPR, of 40% or above. Worker population ratio, WPR, of the top 50% populous districts ranges between 37.3% to 76.7%. Among the 100 most populous districts, Surat in Gujarat recorded the highest levels of LFPR and WPR, while Darbhanga in Bihar recorded the lowest levels of LFPR and WPR. The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held in New Delhi yesterday. Chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal, the committee was briefed by representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. Talking to media, committee chairman Sanjay Jaiswal said the meeting was held in a cordial atmosphere and members raised several questions.
12: The entire meeting was held in a very good and cordial manner. All the MPs asked their respective questions, and our goal, the mandate we have received, is that we have to submit our reports before the winter session. We will definitely be successful in doing so.
11: The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you the story of the evolution of India's sector. India's space sector reforms initiated in 2020 and anchored by the Indian Space Policy 2023 have transformed the nation's space program from a government monopoly into a vibrant, competitive, public-private ecosystem. More details on this from our correspondent.
0: The space sector reforms have brought considerable changes in the space technology sector in the country. The space startup GalaxEye, founded by a team of engineers at IIT Madras that developed Mission Drishti, the world's first opto-SAR satellite, stands testimony to this. The CEO and co-founder of GalaxEye, Suyash Singh, has spoken exclusively to Akashvani on the benefits of space sector reforms.
13: The government is supporting the sector through technology transfers, R&D, more funding initiatives, including the 1,000 crore Space Sector Venture Capital Fund and the Space Technology Development Fund. For a young company like ours, this creates the confidence to take on harder problems and contribute meaningfully to the next chapter of the India Space Program.
0: The reforms in the space sector is encouraging the public-private partnership and helping scale up operations and create a wider ecosystem in the space sector. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
11: Congress candidate for the Nandigram Assembly bipoll, Milan Pradhan, has been arrested in connection with an old murder case related to the 2007 anti-land acquisition movement in Nandigram. Police sources said an arrest warrant had been issued against Pradhan in the case. He is reportedly named in several cases linked to the 2007 Nandigram movement. The Congress has questioned the timing of the arrest and alleged political vendetta by the BJP. The BJP has rejected the allegation, saying the police action was carried out according to law. This is Akashvani giving you the news.
5: For news at your fingertips, follow us on X at AIR News Alerts and join our WhatsApp channel, Akashvani News.
11: Welcome back. You're listening to the Morning News. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a meeting with Canada's Minister

0: Minister of International Trade, Maninder Sidhu, to discuss advancing negotiations on the India-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement, or CEPA. During the meeting in New Delhi yesterday, both sides reaffirmed their commitment to expediting the negotiations and concluding the agreement at the earliest. The CEPA is expected to create new opportunities in trade, in goods and services, investment and other areas of economic cooperation. In a social media post, Mr. Goyal expressed confidence that an early conclusion of the CEPA would help realize the shared vision of significantly increasing bilateral trade and further deepen the India-Canada economic partnership for mutual benefit. India has been ranked first in business climate among 40-plus global markets in the latest Business Climate Survey 2026 by the Swedish Chamber of Commerce in India. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal shared this information in a social media post. He said, India's business climate is setting the gold standard for stability, growth and ease of doing business amid global turbulence. The Global Business Climate Survey 2026 edition presents insights from 41 markets, offering a broad view of Swedish companies' perspectives of doing business abroad. The survey aims to provide a framework for comparing economic performance, outlook, and operating conditions over time in key Swedish export markets. India's software services exports increased 8.2% year-on-year to $221.4 billion in 2025-26. More details in this report. The Reserve Bank of India's annual survey on computer software and IT-enabled services exports released yesterday said 7,569 software export companies were contacted for the survey, of which 2,363, including most large companies, responded. These companies accounted for around 89% of total estimated software services exports, over two-thirds of India's total software services exports during the year. BPO services remained the dominant component of IT-enabled services exports. The US remained the largest destination for India's software exports, accounting for 54.1%, followed by Europe at 31.8%, with Pratna's report, Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
1: In Pakistan, 21 people, including 15 policemen, were killed and over 100 others injured near a blast near a mosque in Kohat district of Khyber Pakhtunkhwa province yesterday. Kohat Hospital Medical Superintendent Dr. Tahir Shah said at least 73 policemen and 30 civilians were injured. The police said the explosion took place during Friday prayers and caused a crater near the mosque. According to police, the unidentified assailants targeted the checkpost before escaping from the spot. Militant group Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan have claimed responsibility for the attack. U.S. President Donald Trump said that the United States has reached a deal with Denmark to strengthen the American military presence in Greenland, ending months of tension over his repeated calls to acquire the Arctic island. The agreement leaves Greenland under Denmark's sovereignty while giving the U.S. what Trump described as a larger security role. A low-pressure area is likely to form over the North Andaman Sea and adjoining areas around this evening. According to India Meteorological Department, the system is expected to intensify gradually and move west-northwestwards towards the South Orissa, North Andhra Pradesh coast during the following 3 to 4 days. Its movement is likely to enhance rainfall activity over Orissa from around September 22nd, particularly over southern parts of the state. The grand opening ceremony of the 20th edition of the Asian Games 2026 will start at the Paloma Mizuho Stadium in Aichi, Nagoya, Japan today at 2:30 p.m. Indian time. We have a report.
2: The Asian Games will run from today to October 4th, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. Double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Tur will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Meerabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lovlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. With Bimal's report, Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi.
1: And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
3: Thank you, Sarabjit. On the Tata Group row, the Hindustan Times leads with Tata Sons Chandrasekharan move short of shareholder math. In the backdrop of the tussle between the two factions of Trinamool Congress, the pioneer rides, symbol stripped, Mamta faces her darkest hour. The statesman takes note, UAE President calls up PM Modi, reaffirms commitment to West Asia peace and stability. The Hindu notes, India-Nepal discuss post-flood recovery reset in bilateral ties. In view of alleged regulatory violations, the Financial Express takes note, FSSAI move against Nestle infant products. 80 chefs, 450 menu items inside Asian Games kitchen. It's a culinary Olympics, says the Indian Express. Marathi film Gondhal is India's pick for Oscars 2027, informs the Hindu. And finally, the Asian Age on its middle page captures a picture of mother cheetah along with her cubs. India-born cheetah gives birth to four at Kuno. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce, and 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a great day.
4: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार. पहले यह संदेश.
5: वेक्टर जनित रोग मलेरिया फाइलेरिया डेंगू चिकनगुनिया कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें. अपने घर के आसपास सफाई रखें. जल जमाव न होने दें. पानी के बर्तनों को ढक कर रखें. पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं.
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं. अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं. मुफ्त जांच और उपचार कराएं.
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
7: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया. चलो सब घर चलते.
8: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था.
7: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं.
8: अरे देख के, हाय गिर गए.
9: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी.
10: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है. प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है. माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना.
11: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना.
12: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
13: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है.
14: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है.
13: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह.
14: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर.
13: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है.
12: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी. पहले मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र. देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जेएसएससी की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट किया रद्द. आयोग को 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश. पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात रांची के निजी अस्पताल में निधन. प्रदेश भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जताया शोक. साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में 21 सितंबर से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान. अगले 48 घंटों तक रांची में बारिश की संभावना नहीं. और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही शुरू. 16 जिलों की 43 टीमें लेंगी भाग। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में युवाओं को 51,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये युवा राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश के 45 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जेएसएससी की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जेएसएससी को 4 सप्ताह में फिर से नया रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। गौरतलब है कि यह मामला आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित करने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 11,000 नियुक्त अभ्यर्थियों में 2,000 सहायक आचार नियुक्ति से बाहर हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुमला जिले में एसआईआर की स्थिति का जायजा लेने के बाद जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पात्र नागरिकों को परेशानी ना हो, इसके लिए बीएलओ के साथ समन्वय और बूथवार प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और संदिग्ध मामलों की जांच कर स्पीकिंग ऑर्डर पारित करें। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में दस्तावेज न होने पर उन्होंने पारिवारिक अभिलेखों से सत्यापन, विवाहित महिलाओं के लिए मायके के खतियान और को मान्य करने और फॉर्म 6 के डिजिटाइजेशन में तेजी लाएं। हजारीबाग में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन के बीच कल विवाद हो गया। जिला प्रशासन की टीम योगेंद्र साव के द्वारा अतिक्रमण की हुई जमीन को मुक्त करने के लिए पहुंची थी। पूर्व मंत्री ने जमीन पर अधिकार से संबंधित दस्तावेज होने और पावर ऑफ अटॉर्नी का हवाला दिया।
15: हमारा एग्रीमेंट है, पावर है, रैयत से मैंने लिया है और नामांतरण के लिए भी आवेदन दिया है। हम तो वही बोल रहे हैं कि आप परमिशन दिखाइए और उसके बाद पूरा तोड़ दीजिए। कोई तो परमिशन दिखाइए, सरकार का रिज्यूम का हमको लेटर दिखाइए कि आप भाई अब तक विधिवत आप रिज्यूम कर लिए जमीन को। तो कोई इनके पास परमिशन नहीं, कोई कागज नहीं, मेरे पास कागज है लेकिन ये देखना नहीं चाहते हैं।
4: वहीं अतिक्रमण हटाने पहुंचे हजारीबाग सदर अंचल पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने कहा कि यह खास महल की सरकारी जमीन है और इस पर निर्माण कार्य गैरकानूनी है।
16: ये जमीन रिज्यूम होने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उपायुक्त महोदय के स्तर से पूर्व में और आयुक्त महोदय के स्तर से दोनों के स्तर से सरकार को ये सब रिकॉर्ड भेजा जा चुका। और अभी आपको पता होगा कि 2.5-3 महीने से हम लोग की सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है खास माल का, और हम लोगों को काफी जमीन की भी आवश्यकता है सरकारी कार्य हेतु, तो हम लोग अपना जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं।
4: पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात निधन हो गया। सिमडेगा की राजनीति को लंबे समय तक दिशा देने वाली पूर्व विधायक और मंत्री विमला प्रधान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन से सिमडेगा के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। विमला प्रधान ने 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर सिमडेगा से जीत दर्ज की थी। वे रघुवर दास सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री भी थीं। उनके निधन पर प्रदेश भाजपा और विभिन्न पार्टी के नेताओं ने शोक जताया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कल पूजा समितियों के साथ बैठक की। उपायुक्त ने पूजा समितियों से आपसी समन्वय से एक ही दिन विसर्जन पर आम सहमति बनाने, सुरक्षा मानकों का पालन करने और बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से सटाकर पंडाल न बनाने का निर्देश दिया।
17: आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार को लेते हुए सभी पूजा समिति के प्रतिनिधियों के साथ और हमारे जिला प्रशासन के सभी लोगों को साथ मिलकर हम लोगों ने बैठक की है और इसके माध्यम से जितने भी पूजा समितियों के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोगों ने लिए हैं और हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी और विभिन्न विभाग उसमें कार्य करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ट्रैफिक के दृष्टिकोण से, हर चीज़ का वो सारा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिए हैं।
4: धनबाद जिले के सात बांधों का जीर्णोद्धार DMFT फंड के 1,34,00,000 रुपए से कराया जाएगा, जिसके लिए लघु सिंचाई प्रमंडल ने दूसरी बार ई निविदा जारी की है। बांधों का जीर्णोद्धार का काम 3 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे जल संरक्षण और स्थानीय जल स्रोतों में सुधार की उम्मीद है। रांची में अपराध नियंत्रण को लेकर सिटी SP पारस राणा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ कल क्राइम मीटिंग की। उन्होंने किसी भी घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
18: निर्देश दिया गया है कि जितने भी जो क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं उस पर जो है एक्शन लिया जाए, साथ ही साथ जो पूर्व के जो अपराधी हैं जो ऐसे फेस्टिवल्स में न्यूसेंस क्रिएट करने का जो पहले प्रयास कर चुके हैं उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाएगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो पंडाल के आसपास घूमते रहते हैं या फिर जो पिक पॉकेटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करके उस संबंधी निर्देश जो है वो सभी लोगों को दिया गया।
4: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 21 सितंबर से झारखंड में फिर से हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि अगले 48 घंटों में रांची में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से झारखंड में बारिश का असर देखने को मिलेगा।
19: साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी थाईलैंड में बना हुआ है और वो अंडमान सागर में इमर्ज करेगा, तो ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका मूवमेंट उत्तर पश्चिम पश्चिम ये दिशा में है और ये फिर थोड़ा सा इंटेंसिटी भी गेन करेगा और थोड़ा सा मजबूत होगा, तो इसके प्रभाव में झारखंड में भी हम लोग देख सकते हैं कि 24 से 22 में बढ़ोतरी आपको देखने को जरूर।
4: झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में 16 जिलों की 43 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मोरहाबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू में होंगे। और अब प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सहायक आचार्य का संशोधित रिजल्ट रद्द करने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने नियुक्तियां रद्द करने के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर अपना पक्ष रखे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, पूरी परीक्षा पर था सिंडिकेट का कब्जा, इसलिए रद्द करने का लिया गया निर्णय। दैनिक भास्कर ने मोस्ट वांटेड 2 करोड़ के इनामी नक्सली असीम मंडल की गिरफ्तारी की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने रांची में RSS कार्यालय पर हमले में 4 राज्यों में ED की छापेमारी की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में JSSC की ओर से जारी सहायक आचार्यों का संशोधित रिजल्ट किया रद्द। आयोग को 4 सप्ताह में नया रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश। पूर्व मंत्री विमला प्रधान का कल रात रांची के निजी अस्पताल में निधन। प्रदेश भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने जताया शोक। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य में 21 सितंबर से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। अगले 48 घंटों तक रांची में बारिश की संभावना नहीं। और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता आज से रांची में हो रही है शुरू। 16 जिलों की 43 टीमें लेंगी भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
20: घंटे के भीतर पिलाए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध।
21: माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम या खिरसा दूध
20: नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक आहार है।
21: ये बच्चे को अनेक गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है
20: और बच्चे की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
21: जन्म से लेकर 6 महीने तक पिलाएं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध,
20: पानी भी नहीं।
21: बच्चा दिन रात में जितनी बार जितनी देर तक चाहे माँ उसे स्तनपान कराए।
20: माँ का दूध सर्वोत्तम आहार,
21: स्वस्थ बच्चा खुशियां अपार।
22: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
23: अली अली मुन्ना,
0: कैसे है नीतू? तुम्हें तो दस्त हो रहा था।
2: अभी ORS और जिंक की गोली से बिल्कुल स्वस्थ है।
22: दस्त होने से बच्चे के शरीर में पानी और जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है।
2: 5 ग्लास साफ पानी में 1 पैकेट ORS का घोल बनाएं।
22: 24 घंटे के बाद नया घोल बनाएं।
2: थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाएं।
22: साथ ही हर दिन 1 जिंक की गोली बच्चे को दें।
2: याद रखें, दस्त बंद होने पर ORS बंद कर दें।
22: पर जिंक की गोली 14 दिनों तक देते रहें।
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में श्रोताओं आपको सुनवा रहे हैं संथाली लोकगीत। कलाकार है सोना मुर्मू और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत के कार्यक्रम माटी की महक में संथाली लोकगीत सुना मुर्मू और साथियों से।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, आज 19 सितंबर है और हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस। तो सर्पदंश जागरूकता दिवस पर हम बात करेंगे सर्पदंश से कैसे बचाव किया जाए, उसका सही उपचार कैसे किया जाए। यह अंधविश्वास नहीं, हमें जागरूकता अपनानी चाहिए। श्रोताओं, सांप, यह शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन सांप हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। समस्या तब गंभीर होती है जब किसी व्यक्ति को जहरीले सांप के काटने पर समय पर और सही चिकित्सा सहायता नहीं मिलता है। आज 19 सितंबर को हम सर्पदंश जागरूकता दिवस के अवसर पर इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हम सर्पदंश से कैसे बचाव करें, उसके लक्षण क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सांप के काटने पर हमें क्या करनी चाहिए और क्या बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सर्पदंश एक चिकित्सकीय आपात स्थिति हो सकती है, इसलिए सांप के काटने के बाद घबराने के बजाय हमें सही कदम उठाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, सांप के काटने पर हमें सबसे पहले क्या करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उसे शांत रखें और जितना संभव हो सके कम से कम चलने दें। प्रभावित अंग को स्थिर रखने की कोशिश करें। व्यक्ति को जल्द से जल्द नज़दीकी ऐसे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं जहां आवश्यक चिकित्सा सुविधा और एंटी स्नेक वेनम यानी सर्प विषरोधी दवा उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो तो इसका उपयोग हमें अवश्य करनी चाहिए। मरीज को पैदल चलाकर या दौड़ाकर अस्पताल ले जाने के बजाय सुरक्षित तरीके से ले जाना बेहतर होता है। यदि सुरक्षित हो और बिना जोखिम उठाए संभव हो तो सांप का रंग, आकार या उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी याद रखने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन सांप को पकड़ने, मारने या उसके पास जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, सांप के काटने पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए। घाव को काटना या चूसना नहीं चाहिए। घाव पर मिट्टी, राख, गोबर, जड़ी बूटी या कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं लगानी चाहिए। बहुत कसकर रस्सी या कपड़ा बांधकर रक्त प्रवाह रोकने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत कसकर रस्सी या कपड़ा बांधकर रक्त प्रवाह रोकने से हमें गलत प्रभाव पड़ सकता है। बर्फ या अत्यधिक ठंडी वस्तु सीधे घाव पर भी नहीं लगानी चाहिए। झाड़ फूंक या घरेलू उपचार के भरोसे अस्पताल जाने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सर्पदंश के बारे में हमारे समाज में अनेक तरह के अंधविश्वास और गलत धारणाएं प्रचलित है। तो याद रखिए, सर्पदंश के मामले में हमारे लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांप के काटने के बाद हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, इस विषय पर हम आपको कुछ जानकारी दे सकते हैं। सांप के विष के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है कि उसका लक्षण क्या है। कुछ मामलों में काटे गए स्थान पर दर्द या सूजन हो सकती है। कुछ जहरीले सांपों के विष से आंखों की पलकें झुकना, धुंधला दिखाई देना, निकलने या बोलने में परेशानी होना, मांसपेशियों में कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ विष रक्तस्राव या शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ लक्षण देखकर यह तय करना उचित नहीं है कि सांप जहरीला था या नहीं। इसलिए सांप के काटने की आशंका होने पर हमें
चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। और अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। बरसात और उसके आसपास के मौसम में सांपों के दिखाई देने की संभावना कुछ स्थानों पर बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में झाड़ियों में लकड़ियों के ढेर पर अनाज रखने की जगहों पर और घर के आसपास हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। रात में बाहर निकलते समय हमें टॉर्च का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। अंधेरे में हाथ किसी बिल लकड़ी के ढेर या झाड़ियों में हमें नहीं डालना चाहिए। घर के आसपास घास फूस और अनावश्यक कबाड़ का जमा नहीं करना चाहिए। सोने की जगह पर हमें अपने उसके आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। खेतों या झाड़ियों में काम करते समय पैरों को सुरक्षित रखने वाले जूतों का पहनना बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों। बच्चों को भी समझाएं कि वे सांप या किसी अज्ञात जीव को छूने या पकड़ने की कोशिश ना करें। और एक जरूरी संदेश श्रोताओं, हर सांप जहरीला नहीं होता और अधिकांश सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए सांप दिखाई देने पर उसे छेड़ने या मारने के बजाय सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए और प्रशिक्षित व्यक्ति या स्थानीय वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए। सर्पदंश केवल हमारे लिए स्वास्थ्य का विषय ही नहीं बल्कि जागरूकता का भी विषय है। एक छोटी सी सही जानकारी किसी व्यक्ति को जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है दोस्तों। आज इस सर्प

0: संस जागरूकता दिवस पर हम संकल्प रखें कि सांप से दूरी रखेंगे, सावधानी रखेंगे, सर्प दंश होने पर घबराएंगे नहीं, घावों को काटे या चूसेंगे नहीं, झाड़ फूक में अपना समय नहीं गंवाएंगे और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएंगे। सही जानकारी, समय पर उपचार, सर्प दंश से बचाव का यही है आधार दोस्तों। इसी संदेश के साथ हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, कि हम सर्पदंश से अपनी बचाव कैसे करें, उससे सुरक्षित कैसे रहें, और सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की पूरी पूरी प्रशंसा कर रही है।

0: और इस गीत के बाद श्रोताओं सुनते हैं एक साक्षात्कार विजयलक्ष्मी हेमब्रम के साथ, उनसे बातें कर रही हैं बीएम मंजू।
1: विजयलक्ष्मी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: जैसे कि आज के हमारे चर्चा का विषय है नारी शिक्षा, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा है क्या।
2: शिक्षा का साधारण अर्थ हम पढ़ाई लिखाई से लगाते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा वो है जो हमें अपने उत्तरदायित्व के बारे में सही ज्ञान देती है, हमारा क्या कर्तव्य है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने परिवार के प्रति, ये हमें सही तरीके से बताती है।
1: ये तो है। और नारी शिक्षा क्या है?
2: और जहाँ नारी शिक्षा की बात होती है, तो जिस तरह समाज के दो धुरी हैं या दो पहिए हैं कहना चाहिए, पुरुष और नारी, तो यदि एक समाज का एक अंग पुरुष शिक्षित होगा और नारी अगर अशिक्षित होगी तो शायद सही तरीके से चलना मुश्किल होगा। इसलिए नारी शिक्षा भी उतना ही महत्व रखता है जितना पुरुषों की शिक्षा। नारी शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाती है, सही संस्कार दे पाती है। और जैसा पुराने समय में लोगों की ये मान्यता थी कि लड़कियों को पढ़ना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि बड़े होकर उन्हें घर ही संभालना है, चूल्हा चौका ही करना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यदि महिलाएं पढ़ी होंगी तो भले वो आर्थिक रूप से परिवार को सहारा न दे सके, लेकिन उनके घर को चलाने का तरीका, घर का बजट बनाने का तरीका ये अशिक्षित महिलाओं से काफ़ी अलग होता है। वे एक योजना बना सकती हैं परिवार को चलाने के लिए, परिवार के लोगों को बांध के रखने का एक अच्छा जरिया बन सकती है। परिवार ही पहला पाठशाला होता है और नारी जो एक माँ होती है पहली शिक्षिका होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की शिक्षा अच्छी होगी। और इस तरह से हमारा परिवार शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा।
1: पर हमारे क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि नारी शिक्षा के लिए बहुत सारी बाधाएं भी हैं।
2: हाँ, हमारे क्षेत्र में नारी की शिक्षा में काफ़ी बाधाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा मुझे लगता है कि गरीबी है, क्योंकि बेरोजगारी अधिक होने के कारण पढ़ाई का जो खर्च है ये हर परिवार अच्छी तरह से नहीं उठा पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर परिवार में दो बच्चे हैं तो परिवार का खर्च भी चलाना और बच्चे की पढ़ाई पर भी खर्च करना एक

0: रोजगार परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा होता है, परिवार के सदस्य बड़े होते हैं, तो खर्च भी बढ़ता है, और बढ़ती हुई महंगाई में यदि प्रत्येक सदस्य कुछ कमा कर न लाए तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। कभी कभी कई विषम परिस्थितियां भी आती है जिसका सामना करना पड़ता है लोगों को।
1: बीमारी भी होती है तो कभी कुछ असामयिक ऐसे घटनाएं भी हो जाती है कि रुपयों की ज़रूरत होती है
0: करते हैं, और ये परिवार की ज़रूरत भी होती है। कई बार तो हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा भी सामने आती है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और वो पढ़ने में काफ़ी आगे भी रहती हैं, लेकिन घर वालों का ये कहना होता है कि बड़े होकर के आखिर इसे शादी ही करना है, तो इसकी शादी कर दी जाए। कम उम्र में शादी के बाद फिर बच्चियां आगे पढ़ नहीं पाती हैं, कई बार परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ में दबकर उनका जो सपना होता है वो ऐसे ही चूर हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम अपनी बच्चियों को पढ़ने का सही मौका दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। कभी किसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे उसमें हारे नहीं, टूटे नहीं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं चला रखी हैं जिसमें महिलाएं अपने काम के साथ साथ या फिर अपनी उम्र ख़त्म होने के बाद, जैसी महिलाएं कहती हैं कि अब हमारा पढ़ने का समय नहीं रहा, उसमें भी वो काफ़ी कुछ सीख सकती हैं, अपना इतना हुनर वो बना सकती हैं कि वे आत्मनिर्भर बन सके और परिवार को एक आर्थिक मदद या आर्थिक सहारा के रूप में परिवार के लिए वो खड़ी हो सकती हैं। आज ऐसी कई क्षेत्र है महिलाओं के लिए जिसमें वो अपना हुनर आजमा सकती हैं। सरकार इन सारी कार्यों की प्रशिक्षण की सुविधा रखी है, कई प्रशिक्षण निःशुल्क होते हैं और महिलाएं व्यवसाय शुरू करना चाहें तो इसके लिए उन्हें पूंजी के रूप में आर्थिक मदद भी दी जाती है। और इन सब के पीछे में एक ही मकसद है कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके।
1: तो हमारे क्षेत्र में इतने योजनाओं के बावजूद, इतने सुविधाओं के बावजूद भी नारी शिक्षा में जो बाधाएं आ रही है, इससे हम किस तरह से निजात पा सकते हैं, यानी कि हम किस तरह से नारी शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे हमारी बहनों को?
0: इसके लिए तो हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए हमें खुद ही जगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हमें अपने अधिकारों को मेरे हाथ में लाकर नहीं देगा। हमें खुद समझना होगा कि हमें पढ़ना है और अपने अधिकारों को जानना है। हमें ये जानना है हमारी क्या सुविधाएं हैं और पढ़ करके हम और क्या क्या लाभ ले सकते हैं,
1: और अपने परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, हम अपने जीवन स्तर को और किस तरह से
0: बेहतर बना सकते हैं
1: और इसमें अपना किस तरह का योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में जागरूक होना होगा।
0: हाँ, इसमें हम बहनों को ही ये सोचने की बात है, क्योंकि कोई दूसरा अपने लिए नहीं सोचता है। यदि हमारे अपने घर में कोई हमारी बहन, माँ या भाभी अगर अशिक्षित है या फिर उसके पास ऐसा हुनर है जिससे वो आगे बढ़ सकती है, तो हमें बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने आस पड़ोस में, समाज में ऐसा एक समूह बना करके लोगों के बीच में जागरूकता लानी चाहिए, ताकि लोग आगे बढ़ें मिल करके, और लोगों का सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका में काफ़ी सुधार होगा
1: और अपने आपको भी हम बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार

0: को बेहतर कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी हम बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा आत्मसम्मान रहेगा इसमें। जब हम अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे, जानेंगे और एक आर्थिक सहारा बनेंगे समाज के लिए, तो इससे हमारा भी आत्मसम्मान रहेगा। यही मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों को जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी बच्चियों की पढ़ाई के प्रति, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं उनके स्वास्थ्य के प्रति भी आप जागरूक रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ बच्ची ही एक स्वस्थ माँ बन सकती है और स्वस्थ परिवार बन सकता है
1: और स्वस्थ नागरिक भी।
0: हाँ,
1: तो आपसे इस बारे में बातें हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विजयलक्ष्मी हेमब्रम से बातचीत नारी शिक्षा पर। उनसे बातें कर रही थी बीएम मंजू। और इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आप श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम रसरंजन में आइए सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती का ये गीत साधना सरगम की आवाज़ में।

सोनू निगम और बेला की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म आज माइस का ये गीत। और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोता हूँ सुनवा रहे हैं आपको सोनू निगम और श्रेया घोषाल के युगल स्वर में फिल्म खाकी का ये गीत।

खाकी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। और अब रसरंजन का अगला गीत है 1947 अर्थ का, श्रीनिवास और सुजाता त्रिवेदी की आवाजों में।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
5: चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
6: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406 पर।
5: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन, बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: और राधाष्टमी के अवसर पर सुनते हैं ये गीत आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओ, अभी आपने सुना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल का गाया फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम का इस गीत को। और गीतों के सिलसिले को इसी प्रकार जारी रखते हुए सुनवा रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

राजा फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: it continues to flow strong and clear for generations to come. Thank you very much. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
1: मुख्य न्यायाधीश
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी सत्र को संबोधित कर रहे थे। साथियों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दुनिया भर के अलग अलग हितधारकों को एक साथ लाने के लिए पर्यावरण और जलवायु की गतिशीलता का भविष्य इस विषय पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस खास इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का मकसद पर्यावरण से जुड़ी अहम चुनौतियों पर सार्थक बातचीत, जानकारियों के आदान प्रदान और साथ साथ मिलकर काम करने के लिए एक बेहतरीन ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के जाने माने एक्सपर्ट्स, जुडिशियल और कानूनी पेशेवरों, पॉलिसी निर्माताओं, शिक्षाविदों और मुख्य हितधारकों को एक साथ लाती है। और अब प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर एनजीटी मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे।
3: And the Honourable Prime Minister has launched the NGT mobile application and now a short film on NGT.
4: NGT mobile application एक ऐसा स्मार्ट प्लेटफॉर्म जो न्यायिक सेवाओं को आपके मोबाइल तक लेकर आता है। अब अपने केस की जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान है। बस केस नंबर, ईयर और जोनल बेंच दर्ज करें और कुछ ही सेकंड में केस स्टेटस आपके सामने होगा। अगली सुनवाई की तारीख जाननी हो या कॉज लिस्ट देखनी हो, सभी आवश्यक जानकारी अब आपकी उंगलियों पर उपलब्ध है। जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन के माध्यम से आप अपने केस से संबंधित आदेश और निर्णय कभी भी देख सकते हैं। वहीं डिस्प्ले बोर्ड फीचर आपको एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की उस समय की चल रही कार्यवाही से जुड़े रखता है। ई फाइलिंग, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, करियर एंड रिक्रूटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस भी अब एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं, जिससे समय की बचत होगी और जानकारी तक आपकी पहुंच और भी आसान बनेगी। आप अपनी आवश्यक जानकारी को फेवरेट्स में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर केवल एक क्लिक में उसे फिर से देख सकते हैं। एनजीटी मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल डिजिटल सुविधा प्रदान करना नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और सिटीजन फ्रेंडली बनाना है। आइए तकनीक को अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण के इस मिशन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और न्यायिक सेवाओं को एक नई डिजिटल पहचान दें। एनवायरमेंटल जस्टिस एनी टाइम एनीवेयर।
2: तो अब एनवायरमेंटल जस्टिस,
3: दैट वाज अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फीचर्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मोबाइल एप्लीकेशन एंड द प्लेनरी सेशन इज packed with the delegates and domain experts and legal numeraries and the honorable judges of the honorable high courts of various states of India and also the Supreme Court of India, and everyone is eagerly looking forward to the inaugural address of the Future of Environment and Climate Dynamics Conference by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: जी कौशिक जी, दो दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से न्यायाधीश, पर्यावरण विशेषज्ञ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधि, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य यहां पर मौजूद हैं।
3: एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी।
5: कार्यक्रम में उपस्थित भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी भूपेंद्र यादव जी, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी जी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, या हॉल में उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव देवी और सज्जनों, प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन

किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है। मुझे खुशी है एनजीटी की ये कॉन्फ्रेंस उसी मिशन को आगे बढ़ा रही है। इस आयोजन के लिए मैं एनजीटी के सभी पदाधिकारियों को, इससे संबंधित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं अक्सर कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है। यहां बहुत सारे ग्लोबल साउथ के मेरे साथी बैठे हैं, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है, 6 गुना ज्यादा। भारत ये तथ्य मजबूती के साथ वैश्विक मंचों पर रखता है और मैं हर भारतवासी से कहूंगा आप भी दम दिखाइए। हमने अपनी परंपराओं और उनकी ताकत को भी दुनिया के सामने रखा है। इन्हीं विषयों को लेकर पेरिस में COP21 के दौरान हमने कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज उस बुक को भी लॉन्च किया था। हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हरेक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथियों, आज का भारत पर्यावरण सुरक्षा के अपने प्राचीन विचारों को आधुनिक विजन में पिरोते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में पर्यावरण से जुड़े हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में भारत ने असाधारण प्रगति की है। हमारा बड़ा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर रहा है और इसने पर्यावरण सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है, मैं G20 के बड़े बड़े लोग हैं ना उनके सामने बता रहा हूं जी, इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने
पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे, उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। ये हिंदुस्तान की ताकत की मैं बात कर रहा हूं। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है। आप आंकड़ों को देखिए, 12 साल पहले भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट थी। 12 साल पहले 2 गीगावाट, अगर यहां वकील बैठे हैं तो जरा ध्यान रखें, आंकड़े कभी काम आएंगे। आज यह 160 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। 2 गीगावाट से 160 गीगावाट 12 साल में। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों को ही सोलर पावर जनरेशन का केंद्र बनाने का मिशन शुरू किया। इस योजना के तहत अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल्स लग चुके हैं। ये दुनिया के कई देशों के टोटल घरों से ज्यादा है। इसके लिए सरकार ने हर घर को करीब 80,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी है। कुसुम योजना के तहत सरकार ने 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप्स लगाने का काम किया है। हमने वन नेशन वन ग्रिड का एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, घरों में एलईडी बल्ब जो बिजली की बचत करने में सफल पुरवार हुआ है, करोड़ों की तादाद में एलईडी बल्ब घरों में पहुंचाए हैं। और इन प्रयासों के परिणाम आज हमारे सामने हैं। अकेले सोलर एनर्जी से ही भारत में करीब, यह आंकड़ा भी वकीलों के लिए है, भारत में करीब 20 करोड़ टन कार्बन एमिशन रोकने में सफलता मिली है। साथियों, सोलर एनर्जी के साथ साथ क्लीन एनर्जी के दूसरे सेक्टर में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बीते 12 साल में देश की विंड एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है, हाइड्रो एनर्जी कैपेसिटी में काफी बढ़ोतरी हुई है, और अब देश न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन पर तेजी से काम कर रहा है। और जो लोग एनवायरनमेंट पर लंबे लंबे भाषण झाड़ते रहते हैं, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी का काम मैं आगे बढ़ाऊंगा, जब अदालतों में जाके खड़े हो जाएंगे रोकने के लिए। इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाने का रास्ता बनाया गया है। इन कोशिशों की वजह से आज भारत की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी करीब करीब 4 गुना बढ़ गई है। भारत कोयले के और अधिक स्वच्छ उपयोग के लिए कोल गैसिफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है। साथियों, भारत आज क्लीन मोबिलिटी
और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है।

0: अभी कुछ दिन पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली है और ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। ये क्लीन मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, 12 वर्षों में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या में करीब 950 गुना का इजाफा हुआ है। 950 गुना। 2014 से पहले के साल में भारत में 3000 से भी कम ईवी की बिक्री थी। 3000। वहीं पिछले साल करीब 25 लाख ईवी भारत में बिकी है। यानी ईवी रिवॉल्यूशन के इस अवसर को भारत पूरी ताकत से अपना रहा है और इससे पर्यावरण की भी मदद हो रही है। हमारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर फास्ट टैग की आधुनिक व्यवस्था से भी टोल बूथ पर वेटिंग कम हुआ है। इससे टोल बूथ पर जो फ्यूल वेस्ट होता है वो बंद हुआ है। साथियों, 2014 तक हमारे देश के 5 शहर में करीब 250 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क था। ये भी मेरे वकील मित्र याद रखे, 2014 के पहले सिर्फ 5 शहरों में 250 किलोमीटर से कम। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चल रही है और भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो नेटवर्क है। साथियों, रेलवे का लगभग 100% शत प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन होने से भी करोड़ों करोड़ लीटर डीजल जलने से बचा है, पर्यावरण की रक्षा हुई है। इसी महीने कुछ दिन पहले करीब 3000 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है। इस पर चलने वाली हर ट्रेन एक बार में सैकड़ों ट्रक्स का लोड लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी का संचालन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितने बड़े लेवल पर पर्यावरण की भी मदद होती है। साथियों, देश में आज करीब 5000 किलोमीटर लंबे वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन होने लगा है, जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली मोबिलिटी है। इन पर चलने वाला एक स्टैंडर्ड इनलैंड वेसल एक यात्रा में दर्जनों ट्रक के बराबर लोड ले जाता है। इससे भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी सहायता मिल रही है। साथियों, अकेले मोबिलिटी सेक्टर में ये सारे बदलाव इस बात के गवाह हैं कि हमारा डेवलपमेंट स्पीडी भी है और सस्टेनेबल भी है। साथियों, आज करोड़ों लोगों की भागीदारी से भारत में जल संरक्षण पर भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। मुझे खुशी है कि देश में 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण हुआ है। कैच द रेन अभियान के तहत देश में करीब 1.5 करोड़ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिसमें बारिश का पानी संरक्षित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए आज 2 करोड़ से ज्यादा किसान सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं से जुड़े हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे इनिशिएटिव से भी पानी की बचत हो रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा सफल उदाहरण है। भारत मिलेट श्री अन्न की पैदावार को बढ़ावा दे रहा है, जो पानी की खपत कम करते हैं। बीते वर्षों में देश में मिलेट्स का उत्पादन भी बढ़ा है और निर्यात भी बढ़कर करीब 1.5 लाख टन हो गया है। इससे किसानों के लिए नए मौके तो बन ही रहे हैं, पानी की भी बचत हो रही है। और इसी मॉडल के कारण दुनिया भी हमारे साथ जुड़ रही है। भारत के प्रयासों के कारण 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। साथियों, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत आज देश में करीब 12.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग के 24,000 क्लस्टर्स बन चुके हैं। यही नहीं, देश में क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की भी करीब 3,000 वैरायटीज विकसित हो चुकी हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देकर भी हम कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर रहे हैं। साथियों, हमारे ये प्रयास कितने व्यापक है इसका एक उदाहरण भारत का फॉरेस्ट कवरेज भी है। ये भी मैं वकील मित्रों के लिए बताता हूं, बीते 12 वर्षों में हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर 22% से ज्यादा बढ़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान के तहत भी देश में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और ये अभियान निरंतर जारी है। साथियों, पर्यावरण के सामने एक बड़ी चुनौती प्लास्टिक वेस्ट की भी रही है और इसलिए भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई है। हमने रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल के मंत्र के साथ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आज भारत में हर रोज हजारों टन वेस्ट को रिसाइकल किया जा रहा है। गोवर्धन योजना के माध्यम से गांवों में गोबर और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को भी उपयोगी संसाधन में बदला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि वेस्ट को समस्या न मानकर उसे वेस्ट को वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर एक रिसोर्स में बदला गया है। साथियों, ये सारे के सारे आंकड़े केवल भारत के विकास के आंकड़े नहीं है, ये मानवता के भविष्य के लिए भारत के योगदान के आंकड़े हैं। साथियों, हमारा सांस्कृतिक विचार है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीव्याः, अर्थात ये धरती हमारी मां है और हम इसकी संतान है। इसी सोच के साथ भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल भविष्य बनाने के लिए काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले डिस्कशंस, उससे जो नए विचार नए समाधान सामने आएंगे, वो हो सकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा संबल बनकर के निकलेंगे। एक बार फिर इस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That, ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister delivered the inaugural address at the Future of Environment and Climate Dynamics Conference organized by the National Green Tribunal here at the plenary session of Vigyan Bhavan. And now the Honorable Prime Minister is departing from the plenary hall. He's shaking hands with the Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupendra Yadav, and the chairperson of the NGT, Justice Prakash Srivastava, and the Chief Justice of India, Justice Sri Suryakant, and the Attorney General for India, Sri R. Venkatramani. And the dignitaries have now departed from the plenary hall of Vigyan Bhavan. And Kamal, the Prime Minister, in very unequivocal terms, mentioned about India's commitment, deep commitment to nature and environment since the dawn of civilization. The Prime Minister complimented the NTG for organizing this timely conference, and he said that carbon emission is wrongly blamed on developed countries, especially of the global south. The historical truth is that the Honorable Prime Minister mentioned that per person emission in India is below 50% of the global average. The developed countries have a per person emission that is more than six times that of India. The Prime Minister mentioned that our traditions and strengths are being shared with the world today. At the Conference of Parties 21 in Paris, the Prime Minister mentioned that India mentioned about convenient action and conformity for change. The Prime Minister mentioned the initiatives of India, such as the One Sun, One World, One Grid, the International Solar Alliance, the CDRI, the Global Biofuel Alliance, the Big Cat Alliance, and Mission Lifestyle for Environment. India's ancient knowledge and its deep commitment to environment is well known. Today, India is a key player in the world of renewable energy. In the last 12 years, solar energy increased from just 2 gigawatts to more than 160 gigawatts now. Through the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, more than 50 lakh houses have solar rooftop panels now, and 80,000 rupees per house has been given as financial help. Through the Kusum Yojana, 30 lakh solar pumps are now functional. The One Nation, One Grid has been completed, and with the LED bulbs, the question of environment pollution has been taken care of. 20 crore tons of carbon emission have been saved. Wind energy, nuclear energy are now open to private players. Non-fossil fuel capacity has increased by four times. India is now committed to coal gasification. India is committed to the welfare of mankind and will be a responsible and sustainable nation, ensuring the future of our civilization, said the Honorable Prime Minister of India.
2: Kaushik, वैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौती तो बड़ी जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक सोच, जिम्मेदार नीतियों, तकनीकी नवाचार और जन भागीदारी के माध्यम से हम इसके प्रभाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और भारत ने इस दिशा में काफी आगे कदम बढ़ा भी दिए हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन के सत्र का सीधा प्रसारण आप सुन रहे थे। चलते चलते हम आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि कल 20 सितंबर 2026 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। और अब अपने तकनीकी सहयोगों कमल सिंह, सुमित कटियार, ओब इंचार्ज विवेक तोमर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रमोद कुमार के साथ मैं यानी कि कमल किशोर बड़ाइक और अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ अन्य कार्यक्रमों के लिए वापस आपको आकाशवाणी के दिल्ली के स्टूडियो लिए चलते हैं। नमस्कार।
3: श्रोताओं, अभी आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण विज्ञान भवन से सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे कमल किशोर बड़ाई और कौशिक रॉय। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमंजरी। आपका
4: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

आकाशवाणी रांची के अपने मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, गीतों का अपना एक संसार होता है। कभी कोई गीत हमें पुरानी यादों तक ले जाता है, तो कभी किसी अपने की याद दिला जाता है। और जब वही गीत आपकी फरमाइश पर सुनने को मिले तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। तो तैयार हो जाइए अपनी पसंद के गीतों और उनसे जुड़ी खूबसूरत यादों के साथ, क्योंकि आज का ये सफर आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपकी भावनाओं का। मैं हूं आपका साथी मनीष, और अब सिलसिला शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों और पसंदीदा नगमों का। तो आज का ये जो पहला पत्र हमें मिला है, वो आया है पटेल नगर मलोट पंजाब से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खुदगर्ज से, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजें हैं, गीतकार फारूक केसर, संगीत राजेश रोशन का।

अगला पत्र हमें मिला है औरंगाबाद से, राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। ये पत्र थोड़ा शिकायती लहजे में है। इन्होंने कहा है कि आप हमारे पत्र को शामिल नहीं करते हैं कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर श्रोता हमारे दिल के बहुत करीब हैं। आप बेशकीमती हैं हमारे लिए, और हमारा प्रयास होता है जब भी हमें मौका मिलता है आपके पत्रों को हम शामिल करते हैं, लेकिन पत्रों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि

कभी इसमें देर भी हो जाती है। बहरहाल, आपकी इस शिकायत को तो आज हमने दूर कर दिया है और आपका पत्र हमने शामिल किया है आज के कार्यक्रम में, और आपके पसंद का आपको गीत सुनवा रहे हैं फिल्म आशिकी से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में, बोल रानी मलिक के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

अगला पत्र हमें मिला है कचहरी चौक रांची से विनीता रौनक प्रियम और कुकू का, और आप लिखते हैं कि फरमाइशी गीतों का एक कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे भी फरमाइशी गीत कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो लीजिए, आपकी जो फरमाइशी गीत की जो ख्वाहिश है वो आज हम पूरी करते हैं, और आपने जो सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में आपको सुनवा रही है। ये गीत संगीतकार नदीम श्रवण है, गीतकार फैज अनवर।

आज के कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से। सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, आदिबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम और जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, बेलदार अकरम आसमा बेलदार और उला आसमा बेलदार। आप लिखते हैं कि आपके पसंद कार्यक्रम का आपको बेसब्री से इंतजार होता है और आप सपरिवार सुनते हैं ये कार्यक्रम। देखिए, हमें भी बहुत खुशी होती है जब आपका इतना प्यार हमें मिलता है। फिलहाल आपकी पसंद का ये गीत आपको हमको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत उत्तम सिंह का।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज की आपके पसंद कार्यक्रम का सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज बजाए गए पसंदीदा गीतों ने आपके दिल में कुछ खूबसूरत रंग और कुछ मीठी यादें जरूर जोड़ी होंगी। आपकी पसंद, आपकी फरमाइश और आपका प्यार ही इस कार्यक्रम की असली पहचान है। इसी तरह अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहिए और संगीत के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो, खुशियों से भरा हो और संगीत यूं ही आपके दिल के करीब बना रहे।

ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: सखियों नमस्कार, मैं मधु आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ।
1: साथ में स्वीकार करें सखियों, मैं जमीन का भी नमस्कार और स्वागत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम अब कार्यक्रम गृह लक्ष्मी की शुरुआत करते हैं।
0: सखियों कैसी हैं आप सभी? मौसम बदल रहा है, कभी बारिश के साथ ठंड लगने लग रही है तो कभी सूरज की चटकीली धूप वातावरण को गर्म करने लग रही है। यानी कि मौसम तो बदल ही रहा है, समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल मधु, समय तो गतिमान है, साथ ही साथ हम इंसानों की उम्र भी गतिमान है। समय के साथ चलकर चेहरे पर अनुभव की कुछ रेखाएं बनती हैं और जिंदगी कुछ नया सीखा जाती है। उम्र का बढ़ना भी इसी खूबसूरत यात्रा का एक हिस्सा है।
0: लेकिन सखियों, इस यात्रा में हम इतना व्यस्त न हो जाएं कि अपने स्वास्थ्य को ही पीछे छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम धन का और जीवन का उपभोग कर पाएंगे। बीमार हो जाने पर जीवन जैसे निरर्थक सा होने लगता है। सखियों
1: सही कहा मधु, उम्र का बढ़ना स्वाभाविक है सखियों, लेकिन उम्र के साथ कमजोर पड़ जाना नियति नहीं है। ये जरूर है जो फुर्ती 20 या 30 वर्ष की आयु में इंसान की होती है ना, वो 50 या 60 वर्ष की आयु में नहीं रह पाती, तब वो देखभाल मांगती है खुद से खुद के लिए।
0: बिल्कुल महजबीन, ये सही कह रही हो तुम। खुद से खुद के लिए देखभाल का मतलब बहनों, जरूर समझ गई होंगी आपकी, आपको हम योगाभ्यास के लिए इशारा कर रहे हैं।
1: हाँ, अक्सर देखने में आता है कि बढ़ती उम्र के लोगों में सुबह उठते समय शरीर में जकड़न, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस का फूलना, कमर में या घुटनों में दर्द, जल्दी थकान जैसी समस्याएं घर करने लगती हैं, जो उनके जीवन की रफ्तार को धीमा कर देती है।
0: बिल्कुल, जीवन सक्रिय रहे, शरीर स्वस्थ रहे और आप अपने परिवार के साथ आनंदित रहें, इसके लिए जरूरत है सखियों नियमित योग करने की। आपको बता दे सखियों कि योग केवल कठिन आसनों के माध्यम से शरीर मोड़ने का अभ्यास नहीं होता है, ये अपने शरीर सांस और मन के साथ जुड़ने का सहज माध्यम भी होता है।
1: हाँ बिल्कुल, इसलिए नियमित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार योग जरूर करनी चाहिए। इससे शरीर का लचीलापन और मांसपेशियों की सक्रियता बनी रहती है। समय यदि नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा सा ही सही, पर अपने लिए अवश्य निकाले समय प्रतिदिन योगाभ्यास जरूर करें।
0: सही कह रही हो महजबीन। और सखियों, योग का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि योग करने से शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहता है।
1: और हम महिलाओं की जिंदगी तो जिम्मेदारियों से जुड़ी रहती है, घर परिवार बच्चे, यदि बाहर काम पर जाना है तो उसकी भी जिम्मेदारी यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रहती है बहनों।
0: ऐसे में कुछ मिनट योग और प्राणायाम के लिए निकालना अपने आप को दिया गया उपहार से कम नहीं होता है बहनों। गहरी और सहज सांसों के साथ कुछ देर बैठिए, मन को शांत करिए और शरीर को हल्के हल्के सक्रिय करिए छोटे छोटे आसन के माध्यम से।
1: इसके लिए शुरुआत आप सुखासन से कर सकती हैं। इस आसन को योग की शुरुआत करने से पहले किया जाता है, जिससे सांस लेने की जो प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जा सके। इस आसन को करने के लिए जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाइए और आंखों को बंद करके अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें और गहरी सांस लीजिए। देखिए फिर कैसा मानसिक और शारीरिक शांति का अनुभव होता है।
0: इसी तरह से महजबीन, अन्य आसन जैसे कि ताड़ासन, उत्तानासन, उत्काटासन, वृक्षासन, सेतु बंधासन, शवासन भी कर सकती हैं सखियां। शवासन में पीठ के बल लेटकर आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान देना होता है। ये आसन सभी आसन करने के बाद अंत में करने से ज्यादा लाभ होता है।
1: साथ ही प्राणायाम और अनुलोम विलोम से भी अवश्य इसे भी करना चाहिए। इससे फेफड़ों की मजबूती बढ़ती है, मन तनाव मुक्त होता है तथा रक्त संचार बेहतर होता है।
0: हाँ सखियों, योगाभ्यास बढ़ती उम्र के लिए लाभकारी तो

0: है ही, साथ ही कम उम्र वालों के लिए भी फायदेमंद होता है। और एक बात ध्यान अवश्य रखें सखियों, कि यदि शरीर में पहले से किसी तरह का रोग या परेशानी है तो योग शुरू करने से पहले किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लीजिए, उसके बाद ही योगाभ्यास करिए।
1: योगाभ्यास करने के कुछ ही दिनों बाद ही आपको दिखने लगेंगे कि इसका जो असर है ना, जिंदगी का जो सफर है कितना आसान होता है।

0: बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि PNG है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो PNG। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद BPCL's PNG।
3: सखियों पुनः स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज की सफर में आप हैं अपनी दो सखियों के साथ, मधु और महजबीन के साथ।
4: अब सखियों वक्त हो गया है मधु की मिठाई का, क्योंकि आज शनिवार है तो आपके लिए आज मधु अपनी मीठी मीठी बातों के संग और क्या लेकर आई है आइए सुनते हैं।
3: सखियों किसी घर की पहचान उसके बड़े और सजावट किए कमरों से नहीं होती है, पहचान होती है रसोई में आती उस खुशबू से जो नाक के पास पहुंचकर कह देती है कुछ तो मीठा बन रहा है यहाँ।
4: क्योंकि उस मिठास में घुली होती है इलायची की सुगंध, घी की शुद्धता और चीनी या गुड़ की चाशनी का मीठापन, क्यों है ना?
3: बिल्कुल महजबीन। तो सखियों गृह लक्ष्मी के इस रसोई से भी मीठी सी खुशबू आपके पास पहुंच ही चुकी होगी, क्योंकि आपकी मधु लेकर आ चुकी है मिठाई एक खास आपके लिए। यहाँ मिठाई सिर्फ स्वाद से नहीं होती है, कुछ बातों में होती है, कुछ यादों में होती है, कुछ रिश्तों में होती है और कुछ उन छोटे छोटे पलों की खुशियों में होती है जिन्हें हम रोजमर्रा की भागम भाग में देख नहीं पाते हैं।
4: बिल्कुल मधु, हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिन्हें हम जीवन के भागम भाग में समझ ही नहीं पाते हैं कि यह खुशियों भरा मीठा समय कब आया और कब चला गया जिसका आनंद हमें लेना चाहिए था।
3: सही कहा तुमने सखी, उस पल को भी भरपूर लुत्फ उठाना चाहिए और जीना चाहिए किसी मिठाई के स्वाद से, क्योंकि वो समय कम नहीं होता है। वैसे सखियों मिठाई हमारे भारतीय घरों में केवल भोजन का ही एक हिस्सा नहीं होती, किसी के यहाँ बच्चा जन्म लिया तो मिठाई, किसी ने परीक्षा पास कर ली तो मिठाई, नया रिश्ता जुड़ा तो मिठाई, त्योहार आया तो मिठाई। भाई हमें तो बहाना चाहिए मिठाई खाने का, क्योंकि मिठाई ही तो खुशी की भाषा बनकर आती है हमारे आपके जीवन में, है ना महजबीन? और इसे अकेले खाने की अपेक्षा बांट कर खाने में आनंद दोगुना हो जाता है, इसीलिए तो मिठाई बनते या खरीद कर लाते ही किस किस को देना है पहला सवाल सामने आता है।
4: बिल्कुल मधु, और यही पर मिठाइयों का महत्व समझ में आता है हम सबको भी कि भाई मिठास की भी जो जीवन और स्वाद के लिए बड़ा जरूरी होता है।
3: आज बाजार में मिठाइयों की कितनी भी किस्में आ जाएं, पर सखियों घर में अपने रसोई घर में बनी हुई मिठाइयों की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि रसोई घर केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती है हमारे यहाँ, वो तो आपसी स्नेह भरे संवाद की भी जगह होती है। तभी तो माँ बेटी को सिखाती है वहाँ कि एक तार की चाशनी बनानी है कि दो तार की चाशनी बनानी है। दादी ने भी तो वहीं पर कभी जलेबी बनाई थी तो कभी पेड़े और गुजिया त्योहारों पर, और वो दुधौरी जो जीप पर जाने से पहले ही मन को ललचा देती है कि कब जल्दी से दादी और माँ बनाए उसे और हम खा लें। तो दुधौरी मिठाई का नाम सुनकर आपके मन में ये बात तो आने ही लगी होगी ना सखियों कि आज आपकी ये सखी यानी मैं दुधौरी की रेसिपी बताने वाली हूँ, और बता देती तो अच्छा रहता है ना। आप जल्दी से सीख लेती और आज ही अपनी रसोई में बनाकर अपने परिवार के लोगों को प्यार से खिलाती और खुद भी खाती और खूब वाहवाही लूटती।
4: वाह मधु, आज तुम सखियों के लिए दुधौली की विधि बताने वाली हो। भाई दुधौली का स्वाद तो मुझे भी बहुत बहुत पसंद है, तो चलिए सखियों हम मधु के हाथों की बनाई इस मिठाई का भी आज टेस्ट ले लेते हैं।
3: बिल्कुल महजबीन, तो सखियों चलिए नोट कर लीजिए सामग्री और उसकी मात्रा। फुल क्रीम दूध 3 कप, चावल 1/2 कप, चीनी स्वादानुसार, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, घी एक बड़ा चम्मच, तेल जरूरत के अनुसार। अब बनाने की विधि भी आपको बता देते हैं सखियों। तो सबसे पहले भारी तल्ले के बर्तन में दूध गर्म कर लीजिए। जब दूध में उबाल आने लगे तब चावल अच्छे से धोकर इसमें डाल दीजिए और फिर लगातार इसे कलछी से चलाते रहिए।
4: सखियों, लगातार चलाते रहने से चावल तल्ली में पकड़ता नहीं है, वरना नीचे से जलने का खतरा रहता है, क्यों मधु?
3: बिल्कुल सही कहा तुमने महजवीन। चावल को देखते रहिए कि पका कि नहीं, और तब तक उसे पकाइए जब तक वह दूध को सोख ना ले। अब इसमें इलायची पाउडर मिला दीजिए और गैस का नॉब बंद कर दीजिए। अब चावल और दूध के मिश्रण को मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लीजिए। पिसे मिश्रण को छोटा छोटा लड्डू का आकार देना है तो इसके लिए पहले आप हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, इसके बाद ही लड्डू बनाइएगा। अब एक कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार कर लीजिए और जो लड्डू बनाकर रखी हैं उन्हें दूसरी कढ़ाई में तेल गर्म करके उसे डीप फ्राई कर लीजिए और प्लेट में निकाल कर फिर उसे रख दीजिए। इसके बाद फ्राई किए लड्डू को चाशनी में आधे घंटे के लिए डालकर छोड़ दीजिए, फिर निकाल दीजिए, क्योंकि दादी नानी की खास मिठाई दुधौरी अब आपके हाथों से बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो चाशनी में केसर भी डाल सकती हैं सखियों, जिसे खास प्रकार की सुगंध के साथ दुधौरी स्वाद में और भी बेहतर बन जाएगी।
4: हाँ सखियों, और मधु के बताए इस मिठाई का स्वाद खुद तो खाइए ही, अपने चाहने वालों को भी जरूर खिलाइए प्यार से,
3: क्योंकि मिठाई की मिठास में छुपी होती है आपके रिश्तों के अपनेपन की मिठास। सही कहा ना सखियों। एक जानकारी इस मिठाई से जुड़ी आपको दे देते हैं सखियों, कि इतिहासकार और प्राचीन कहानियों के अनुसार प्राचीन समय में ग्रामीण इलाकों में जब मावा अथवा खोया आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, तब महिलाओं ने घर में मौजूद सामान्य चीजों से ही, यानी कि चावल, दूध, चीनी, घी, इन्हीं से मिलाकर इस मिठाई का आविष्कार किया और तब टेस्टी दुधौरी लोगों के स्वाद तक पहुँच गई। तो सखियों, इस मीठी मीठी बातों और मिठाई के साथ अब एक मीठा सा गीत भी सुन लिया जाए, क्यों महजबिन?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।

0: बहनों, फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
1: तो बहनों, अब समय हो गया है भाई महजबीन की रसोई का, तो आइए देखा जाए कि महजबीन अपनी रसोई से आपको आज क्या खिलाने वाली हैं।
0: आज अपनी सखियों को हम अपनी रेसिपी पूरन पोली के बारे में बताएंगे, आप तैयार रहें। सामग्री है आटे के लिए 2 कप गेहूं का आटा, 1 से 2 चम्मच तेल या घी, छोटा यानी चम्मच यानी आधा चम्मच आप थोड़ा नमक ले लें स्वाद अनुसार, पानी आवश्यकता अनुसार, और भरावन के लिए जो अंदर आपने भरना है रोटी में आटा में, उसमें 1 कप चना दाल, 1 कप गुड़ स्वाद अनुसार, आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा जायफल का पाउडर और 1 से 2 चम्मच घी।
1: तो मैं जब इन बनाने की विधि भी बताओ क्योंकि हमारी सखियां सुनने के लिए बेचैन होंगी, है ना?
0: हाँ, क्यों नहीं। बनाने की विधि के लिए आप तैयार रहें कि हम किस तरह से इसे बनाना है। हमें चना दाल को धोकर 2 से 3 घंटों के लिए भुई भिगो कर रख दें, फिर नरम होने तक उबाल लें। दाल का जो अतिरिक्त पानी है उसे निकाल दें। कढ़ाई में तेल जो दाल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। इसमें आप डालें इलायची, थोड़ा सा जायफल डालें। ठंडा होने पर इसे अच्छी तरह मैश कर लें या पीस लें, यानी कि जो आपका चना दाल है ना वो पीसा होना चाहिए। अब आटे में नमक और तेल डालकर नरम आटा गूंध लें और इसे इस आटे को 15 से 20 मिनट तक ढक कर रखें। आटे की लोई इस बनाकर इसमें पूरन भरें और हल्के हाथ से बेलें। ध्यान रहे सखियों, जो बेलने वक्त थोड़ा ध्यान से बेलें ताकि ये टूटे ना। अब गरम तवे पर दोनों तरफ से सेंकें और थोड़ा घी लगाती रहें, और ये दोनों तरफ जब अच्छी तरह से पक जाए तो गर्मा गर्म पूरन पोली को घी, दूध या दही के साथ परोसें। तो बहनों, एक बात आप ध्यान रखें कि पूरन जितना अच्छी तरह से सूखा और मुलायम होगा, पूरन पोली और बेलना भी आसान होगा, और ये जो बन करके तैयार होता है ना, मतलब उसका स्वाद का क्या कहना।
1: तो भाई, ये टेस्टी सा रेसिपी बनाकर सखियों का तो मन ही खुश हो जाएगा महजबीन, जब अपने परिवार को खिलाएंगी वे। अब तुम शायद किचन टिप्स बताने वाली हो, है ना? तो सखियों को चलो किचन टिप्स भी बता दें।
0: हम अपने बहनों को ये समझाएंगे कि किस तरह से आप ये जो आप किचन टिप्स छोटी छोटी बातें हैं अपने किचन के बारे में, उसे आप किस तरह से ध्यान में रख सकती हैं। जैसे हम ये ध्यान रखें कि पत्तियों को, जो पत्तियां वाले ये चीज़ होती हैं, जैसे कि धनिया पत्ता, आपका कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें अच्छी तरह से धो लें और इसे सुखा करके किसी टॉवल में या फिर हल्के ऐसे पेपर में लपेट करके रखें ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। और इसमें आप ये भी ध्यान रखें बहनों कि जिस तरह फ्रिज की अगर हम बात करें, फ्रिज में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें रखे रखे ध्यान में निकल जाता है कि हमने कुछ सब्जी रखी, हमने कुछ मसाले रखे हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि फ्रिज को हमेशा सप्ताह में एक बार ध्यान रखें किस डब्बे में आपने क्या रखा है, कहाँ पर किस चीज़ की आपने बना करके रखे, मसाले रखे हैं या फिर कुछ सब्जियाँ काट के रखें, उसको भी आप देखें। तो ऐसे तो टिप्स बहुत सारे हैं किचन की। हम इसे ये भी देखेंगे कि फल है जो फ्रिज में रखने लायक फल है, उसको आप ज़्यादा दिन ना रखें, उसे ज़्यादा देर तक फ्रिज में यूं ही पड़ा रहने ना दें, और ये भी देखें कि उस फल को आप जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करें। तो आगे हम और भी बहुत सारी टिप्स बताएंगे बहनों। तो अब समय है हम अपनी बहनों को एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत सुनवा देते हैं।

0: सखियों, स्टूडियो की घड़ी अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रही है कि हम कार्यक्रम में और आगे बढ़ें।
1: तो आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।
0: अब आपकी दोनों सखियां मधु
1: और महजबीन
0: आपसे लेती है विदा। नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थी मधु चौबे और महजवीन, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 MHz पर। अभी आप सुनेंगे शैक्षिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे शिक्षा का सरस माध्यम हिंदी विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं सुदीप कुमार, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की है।
1: हमारे राष्ट्र की सबसे लोकप्रिय और अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली सरस और लोकप्रिय भाषा है, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। हिंदी एक प्राचीन और भारतीय उपमहाद्वीप की लोकप्रिय भाषा है, जिसमें सरलता और सुगम्यता के साथ मातृभाषा की पहचान समाहित है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एकता का सूत्र और सांस्कृतिक विरासत है। हिंदी भाषा की सरलता यहाँ से प्रारंभ होती है कि बच्चा सबसे पहले अपनी माता से जो भाषा सीखता है, वह पूरा जीवन वो भाषा उसके ज्ञान और आत्मा की गहराई में समाहित हो जाता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम होता है, अर्थात मातृभाषा। हिंदी देश के आत्मविश्वास की भाषा है। यह बोलचाल में सरल, रोचक और बृहद व्याकरण के कारण सरस भाषाओं में शुमार है, अर्थात हिंदी एक सरस भाषा है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो यह शिक्षा बहुत ही आसान और आकर्षक हो जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम हम प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी भाषा के सुगमता की चर्चा करेंगे, जिसमें बच्चे बहुत सहज रूप से अपने माता पिता के साथ शिक्षकों से अपनी बात कहते हैं। हिंदी सरल, लोकप्रिय और आसान भाषा होने के साथ साथ यह एक आत्मविश्वास की भाषा है, जिसमें छात्र को पढ़ने के साथ उसे अभिव्यक्त करने की भी क्षमता स्वतः ही प्राप्त होती है। छात्र जो अबोध है और प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ना प्रारंभ करता है, वह अपनी भावनाओं को एक भाषा के रूप में व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम हिंदी को ही माध्यम बनाता है, क्योंकि यह उसकी मातृभाषा भी है और उसके बोलचाल की भाषा भी है और उसके पढ़ाई के माध्यम की भी सरस भाषा है। अर्थात हिंदी एक सरस भाषा भी है, जो रोचक है, जन जन तक लोकप्रिय है। हिंदी भाषा में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एवं साहित्य से लेकर चिकित्सा शिक्षा तक के आयाम जुड़े हुए हैं। हिंदी एक सरल भाषा है, क्योंकि यह ना तो कठिन है और न ही क्लिष्ट, बल्कि यह ज्ञान को सुलभ बनाती है। हिंदी हमारी शिक्षा को सरल, सहज और सुलभ बनाती है, इस कारण यह सरस भाषा है। हिंदी के सरस भाषा होने का कई मुख्य कारण हैं। हमारे देश और राज्य के कामकाज की भाषा हिंदी है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह भाषा सरस है, सरल है, सीख ले बोलने और लिखने में आसान है। हिंदी के सरलता के साथ इसकी विशालता की भी चर्चा करते हैं, तो हम पाते हैं कि आज हिंदी की पहुंच पृथ्वी के सभी समाज और देश में है। आज से एक दशक पहले मेडिकल साइंस तक पहुंच इसका मुख्य कारण है। हिंदी की सरलता और सहजता ने इसे बचपन की भाषा से बाहर निकालकर मेडिकल साइंस जैसे क्लिष्ट क्षेत्र में भी लोकप्रियता हासिल कराई है। आज हमारे देश के कई राज्यों ने चिकित्सा विज्ञान में हिंदी भाषा को समाहित किया है और किताबों की उपलब्धता होने लगी है। चिकित्सा क्षेत्र में हिंदी भाषा की पहुँच एकमात्र कारण है हिंदी भाषा की विशालता और सरलता। इस भाषा की गंभीरता और विशालता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है, जिसमें क्लिष्ट शब्दों को भी बड़ी सुगमता से समझने में सहयोग किया जाता है। अर्थात हिंदी मानव के जन्म से लेकर लोकप्रियता से होते हुए उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम बना है। हिंदी भाषा की सरसता ने तो आज न्यायालय के कार्यों में भी स्थान पा लिया है और न्यायालय के कार्यों में अपने आप को समाहित करने के लिए स्थापित कर लिया है। आज माननीय न्यायालय के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी देश की भाषा है और हिंदी सबसे सरस, सहज और लोकप्रिय भाषा है। हिंदी के सरसता की चर्चा करते हुए हमें इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि अभिव्यक्ति के लिए एक शब्दों के कई पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, जिसका प्रयोग सटीक और परिस्थितियों के अनुसार सही विचारों को अभिव्यक्त करता है। देश के कई राज्यों में राजभाषा विभाग संचालित है, जो हिंदी के ज्ञान की सुगमता सुलभता के लिए कृत संकल्पित हैं। शिक्षा में हिंदी भाषा को माध्यम बनाया गया है। हमारे राज्य झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, जो राजधानी से लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी बोली जाती है। हिंदी के क्षेत्र में शिक्षा चाहे कोई भी स्तर का हो, एक सरस माध्यम बना दिया गया है। इसे प्रमाणित करते हुए 1979 ईस्वी में भारत के प्रतिष्ठित सिविल सर्विस परीक्षा UPSC में हिंदी विषय को मुख्य परीक्षा का माध्यम बनाया गया, अर्थात शिक्षा के प्रारंभिक क्षेत्र से लेकर उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय से होते हुए भारत के प्रतिष्ठित उच्च पदों के लिए आयोजित परीक्षा के मुख्य परीक्षा में हिंदी विषय को माध्यम बनाया गया, ताकि भारत के संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सेवा में हो सके। यह इसी कारण संभव हो सका कि हिंदी एक सरस भाषा के रूप में पूर्व से ही स्थापित थी, जो सन 1979 में प्रमाणित तौर पर UPSC सिविल सर्विस के मुख्य परीक्षा का माध्यम में शामिल हो सका। हिंदी भाषा के सरस होने का तीसरा मुख्य कारण है इसकी देवनागरी लिपि का होना, जो संस्कृत की देवनागरी लिपि है। इसका व्याकरण समृद्ध है और समझने में सरस भी है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और यह कई भाषाओं की जननी है, जो मूल रूप से भारत देश में बोली जाती है और उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलित है, उनकी जननी है, जो मूल रूप से भारत और भारत के बाहर भी प्रचलित है। उन्हीं क्षेत्रीय भाषाओं में प्रारंभिक माध्यमिक के साथ स्नातक शिक्षा भी दी जाती है, अर्थात हिंदी कई क्षेत्रीय भाषाओं की जननी है और सभी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार करती है। हिंदी की लोकप्रियता का मुख्य वजह यह भी है। खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंचपरगनिया जैसे क्षेत्रीय भाषाओं के लिखने की मुख्य लिपि देवनागरी ही है। हिंदी अपनी लोकप्रियता के कारण देश के भूभाग से बाहर जाकर विदेशों में भी लोकप्रिय है। यह विश्व की तीसरी बोले जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। यह अपनी वैज्ञानिक बनावट, प्राचीन सांस्कृतिक प्रभाव और विशाल भारतीय प्रवासियों के बीच में लोकप्रिय होकर दुनिया के हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसकी सरलता और वैज्ञानिक बनावट। हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है, इस कारण इस भाषा को सीखना और सिखाना बहुत ही आसान है। कारण से यह भाषा दुनिया के हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी अपनी पहुँच बना चुकी है। हिंदी भाषा आज की आर्थिक और तीसरी दुनिया का सरल माध्यम बनता जा रहा है। भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केट के कारण वैश्विक कंपनियां और प्लेटफार्म अब हिंदी को माध्यम बनाने लगे हैं, प्राथमिकता देने लगे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कामकाजी और पेशेवर भारतीयों ने वैश्विक स्तर पर हिंदी को अपनाकर इसकी सरसता को प्रमाणित किया है। हिंदी भाषा आज 40 से अधिक देशों में, वहाँ के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में भाषा और साहित्य के रूप में पाठ्यक्रम में चलाए जाते हैं। अमेरिका के हार्वर्ड, कोलंबिया के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जैसे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और विशाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग स्थापित है, जहां हिंदी का इतिहास और हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और लंदन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य और भाषा विज्ञान पर उच्च स्तरीय कार्यशाला आयोजित होते रहते हैं और एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जो हिंदी भाषा को शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाता है। हिंदी भाषा की लोकप्रियता शिक्षा में है का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच शुद्ध हिंदी बोलना एक प्रतिष्ठा और स्टेटस के रूप में देखा जाता है। जर्मनी, चीन और जापान में हिंदी विषय को पढ़ने में वहाँ के छात्र अत्यधिक रुचि ले रहे हैं और इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो हिंदी की सरसता को सहज ही स्थापित करते हैं। हिंदी भाषा की मजबूत पकड़ ने भारत के परतंत्रता काल में भी इसे अपनाए रखने और इस भाषा को इंग्लैंड तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की गुलामी ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया था, जिसमें भाषा का क्षेत्र भी शामिल था। परतंत्रता काल में विदेशी भाषा अंग्रेजी को महत्व दिया जाने लगा था, इसके बावजूद हिंदी भाषा की पहुंच कम नहीं हुई और आज यह इंग्लैंड और अमेरिका तक जा पहुंचा है। संक्रमण काल में भी हिंदी को समाप्त नहीं किया जा सका, यह इसकी सरसता की मिसाल है। हिंदी भाषा का आध्यात्मिक महत्व इतना प्रभावी है कि कई धार्मिक पुस्तक, मंत्र, आरती गायन और प्रवचन इस भाषा का उपयोग करते हैं। शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए दुनिया के सभी धर्म के पवित्र ग्रंथ हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं और हिंदी में सभी धर्म के उपदेश प्रसारित किए जाते हैं। कई धर्म के धर्म ग्रंथों की रचना उनकी अपनी भाषा अलग अलग भाषाओं में हुई थी, इसके बावजूद हिंदी की लोकप्रियता, व्यापकता और सरलता के कारण विद्वानों ने हिंदी में इसका अनुवाद किया और दुनिया के हर कोने में हिंदी भाषा में सभी धर्म के उपदेश और ग्रंथों का अनुवाद किया गया ताकि जन जन तक इस उपदेश को पहुंचाया जा सके। यह प्रमाणित करता है कि हिंदी एक लोकप्रिय और सरस भाषा है। जब भाषा की धार्मिक संप्रभुता बनने लगती है तो वह भाषा लोगों के भावनाओं से होकर गुजरती है और मन के साथ दिल और दिमाग को प्रभावित करती है, जो हिंदी भाषा ने किया है। हिंदी एक संपर्क की भाषा बन चुकी है। भारत के अधिकांश राज्यों में चाहे स्थानीय भाषा कोई भी हो, अब एक दूसरे से संवाद करने में अक्सर लोग हिंदी का सहारा लेते हैं। हिंदी भाषा आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है। कश्मीरी हो या तमिल, मराठी हो, बंगाली हो या भोजपुरी हो, खोरठा हो या कन्नड़ हो या मलयालय, सभी क्षेत्रों में हिंदी को अपनाया जा रहा है और हिंदी में वार्तालाप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह हिंदी के सरस और सरल होने का प्रमाण है। हिंदी भाषा को सरस भाषा का दर्जा प्राप्त है क्योंकि ये भारत के साथ विश्व के सभी समाज में लोकप्रिय हो रहा है। कोई भी भाषा जन जन तक तभी पहुंचती है जब वो सरस और सरल हो, साथ ही सहज में ही सीखी जा सकती है। ये सभी गुण हिंदी भाषा में मौजूद हैं, तभी हिंदी भाषा एक सरस भाषा है। शिक्षा में हिंदी सरस माध्यम है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, अर्थात हिंदी एक स्थापित रूप से सरस भाषा है।
0: शिक्षा का सरस माध्यम हिंदी। शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम में इस विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे सुदीप कुमार, प्रस्तुति सहयोग सुनीता कुमारी और प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

संगीत की एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत मुलाकात लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। और फिल्मी गीतों की देखिए अपनी अलग ही दुनिया होती है। कभी कोई गीत बीते पलों की याद दिलाता है, तो कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तो कभी बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाता है। तो आइए आज के इन 15 मिनटों में सुनते हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत फिल्मी नगमे जो शायद आपकी भी पसंद हो, संगीत का साथ हो और आपकी पसंद के गीत हों, तो ये सफर भला कैसे अच्छा ना लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से।

फिल्म फूल और कांटे से सुन रहे थे आप ये गीत कुमार सानू की आवाज में, बोल समीर के थे, जिसे संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। अगला गीत आपके लिए हमने लिया है फिल्म आशिकी से, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें, गीत समीर ने लिखे, संगीत नदीम श्रवण का।

ये आकाशवाणी कराची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स, FM 100.5 MHz पर। आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है, और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आह्वान भी कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि पर्यावरण संबंधी न्यायाधिकरणों, नियामक तंत्रों और अनुपालन ढांचों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही देश में पृथ्वी संरक्षण का विचार मौजूद था। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पर्यावरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसकी प्राचीन सभ्यतागत विचारधारा की गहराई में निहित है, जो पृथ्वी को संपत्ति नहीं बल्कि एक साझा विरासत और पवित्र धरोहर मानता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ आई थी जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि वाणिज्यिक समुद्री आवाजाही भू राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बननी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने बृहस्पतिवार को परिषद में कहा कि समुद्री आवाजाही के अधिकारों पर जबरदस्ती, धमकियों, गैरकानूनी प्रतिबंधों का मनमाने दखल का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that free trade agreements are opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new partnerships and markets for countries' entrepreneurs and create new career possibilities for the youth. He said the talent and skills of countries' youth have won the trust of the entire world.
1: आज भारत तेजी से ग्रो करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है. इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की ग्रोथ रेट 7.8% रही है. इन्वेस्टमेंट में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है. रेटिंग एजेंसियां भारत की रेटिंग सुधार रही है और ये प्रगति ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया अनेक अनिश्चितताओं से गुजर रही है. भारत की इस ग्रोथ के पीछे बीते वर्षों के रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है.
2: On the occasion, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, an assessment of employment generation and recruitment through Rozgar Mela has shown that there has been a significant increase in government appointments along with a greater transparency. Prime Minister Narendra Modi has said that India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average. Inaugurated

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत सभी रिक्त पदों को 3 माह के भीतर भरने का दिया निर्देश। एमएमडीआर एक्ट पर झामुमो भाजपा आमने सामने। झामुमो ने कहा, हक के लिए जारी रहेगा संघर्ष। भाजपा ने राज्य सरकार को एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन करने की दी सलाह। अपराध नियंत्रण को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की। बेहतर पुलिसिंग पर दिया जोर। और नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रत मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर-17 बालक वर्ग में झारखंड ने सैनिक स्कूल इम्फाल को 3-0 से किया पराजित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी युवा आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
1: आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने। इसमें आप जैसे

0: आपाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार में रहते हुए आपको हर वो निर्णय लेना है जो विकसित भारत के अभियान को, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को निरंतर सशक्त करे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत का प्रमुख ध्यान नवीकरणीय ऊर्जा पर रहा है और इसने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: प्रकृति और पर्यावरण के विषय पर सदियों तक भारत ने एक तरह से विश्व का मार्गदर्शन किया है। अपने उस वैचारिक कमिटमेंट को लेकर, अपने सांस्कृतिक अनुभवों को आधार बनाकर भारत अब आधुनिक क्लाइमेट चैलेंजेस के समाधान भी दे रहा है और साथ ही भारत मानवता के सामूहिक प्रयासों के लिए आवाहन भी कर रहा है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों समेत अन्य रिक्त पदों को 3 माह में भरने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की कोर्ट ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज की विशेष श्रृंखला का विषय है श्री अन्न यानी मिलेट्स, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाजों को न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद बताया है।
0: मिलेट एक प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से एनवायरमेंट की सबसे बड़ी सेवा करते हैं।
1: इधर प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्य के किसान मिलेट्स की खेती कर लाभान्वित हो रहे हैं। हजारीबाग में किसान ज्वार, बाजरा और मड़ुआ समेत मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। बानादाग के किसानों ने बताया कि इन फसलों में कम पानी की जरूरत होती है और रासायनिक खाद का उपयोग भी कम होता है।
2: हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा श्री अन्न योजना के तहत मड़ुआ की खेती कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को एक एकड़ में फॉर्म भरने पर 3,000 रूपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। इसमें पटवन की जरूरत नहीं होता है ज्यादा और इसमें कीटनाशक दवा भी हम लोग को देने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, जिसके कारण हम लोग को बहुत लाभ होता है।
3: मोदी जी ने आह्वान किया है, यह किसानों के हित कर है। जो मोटे अनाज की खेती किसान कर रहे हैं तो उससे जो पड़ती भूमि है उसका जो है सो उपयोग हो रहा है। किसान खेती करके काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इसका बहुत धैर्य से प्रयोग हो रहा है।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए संबंधित समिति की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कराने और राज्य सूचना आयोग में अपीलों एवं शिकायतों की नियमित सुनवाई शुरू कराने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा सिस्टम की जांच के लिए जज NTA के ऑफिस का दौरा करेंगे। इस दौरान वे देखेंगे कि परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराने के सुधारों को लेकर वास्तव में काम हो रहा है या नहीं। खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम MMDR पर राज्य में एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि MMDR एक्ट पर झारखंड अपना हक पाने के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करने को तैयार है।
4: झारखंड और झारखंडियों के साथ जो 9 साल

0: आपके किया है MMDR के माध्यम से। इतिहास गवाह है, झारखंडी जब जब अपने अधिकारियों के लिए लड़ा है तो वो जीता है। हर तरह की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं, चाहे वो अदालत की लड़ाई हो या सड़कों पर लड़ना पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से हम इसे आगे बढ़ाए।
1: वहीं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल चाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार को MMDR एक्ट का विरोध करने से पहले एक्ट के बारे में अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम झारखंड के लिए लाभकारी साबित होगा।
2: विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं करना चाहिए। MMDR एक्ट में कैसे नुकसान हुआ है, हम तो खुली डिबेट की चुनौती देते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जनता के सामने आए और स्पष्ट करें कि कैसे MMDR एक्ट से राज्य का नुकसान हो रहा है।
1: जमशेदपुर में अपराध नियंत्रण को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की है। SSP कार्यालय सभागार में हुई बैठक में SSP डॉ. एहतेशाम वकारिब ने कहा कि दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों ने बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा की।
3: अक्सर हम लोगों ने जो पाया है कि क्राइम जो करता है यहाँ उस क्षेत्र में घुस जाता है या वहाँ से क्राइम करके इस तरह क्षेत्र, लेकिन अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बिकॉज हम लोग एज ए टीम यहाँ पे काम करेंगे। पिछले 2 महीने में दोनों टीमों ने मिलकर अच्छा काम किया है, इसी दिशा में और बेहतर काम करने के लिए ये बैठक की शुरुआत हुई है और आगे भी इस तरह की बैठक हम लोग करते रहेंगे।
1: पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में तैनात जैप 8 के सूबेदार जवान मुचन पाल ने आज अपनी सर्विस हथियार से खुद को गोली मार ली। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 बालक वर्ग में झारखंड ने कल सैनिक स्कूल इम्फाल को 3-0 से पराजित कर दिया। इस मुकाबले में झारखंड की टीम ने शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर अपना दबदबा कायम रखा। आज झारखंड का मुकाबला केरल से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत सभी रिक्त पदों को 3 माह के भीतर भरने का दिया निर्देश। MMDR एक्ट पर झामुमो भाजपा आमने सामने। झामुमो ने कहा, हक के लिए जारी रहेगा संघर्ष। भाजपा ने राज्य सरकार को एक्ट के प्रावधानों का अध्ययन करने की दी सलाह। अपराध नियंत्रण को लेकर जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने संयुक्त रणनीति तैयार की। बेहतर पुलिसिंग पर दिया जोर। और नई दिल्ली में खेले जा रहे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर 17 बालक वर्ग में झारखंड ने सैनिक स्कूल इम्फाल को 3-0 से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

पॉप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम मनोरंजनी में अभी आप सुन रहे थे कलाकार अनिता सेन को। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मेहंदी हसन की आवाज में ये गजल। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां आप मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुन पाएंगे।

0: That time, double Olympic medalist Manu Bhakar and shot putter Tajinder Pal Singh Toor will be India's flag bearers at the opening ceremony. The Asian Games will run from today to 4th of October, with more than 500 Indian athletes set to compete across 37 sports. The Indian contingent will feature 5 individual Olympic medalists, despite the withdrawal of defending javelin throw champion Neeraj Chopra due to an ankle injury. PV Sindhu will spearhead the badminton campaign, while Mirabai Chanu leads the weightlifting contingent. Shooting will feature Manu Bhakar, Lavlina Borgohain will compete in boxing, and Aman Sehrawat will represent India in wrestling. The India Meteorological Department, or IMD, has predicted heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Maharashtra, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana tomorrow. The Met Department has predicted thunderstorms and lightning over Marathwada, sub-Himalayan West Bengal, East Rajasthan, Jharkhand, Goa, Odisha and parts of northeastern India tomorrow. Heavy to very heavy rainfall is also likely to prevail over Andaman and Nicobar Islands today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says free trade agreements are opening new doors of opportunities for the country's youths, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Prime Minister Modi says India's contribution to per capita carbon emissions is less than half of global average, highlights India is the only country in G20 that fulfilled commitments made at COP21 ahead of schedule. Government to train 34,000 rural youth under Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana 2.0 across most states and union territories. India dispatches 11 tons of fresh relief material to flash flood recovering Nepal. UN warns Pakistan against forcibly deporting Afghan refugees, also raises concerns over a directive requiring medical institutions to remove Afghan students. Assam remembers iconic singer-composer Zubin Garg on his death anniversary, and 20th Asian Games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
2: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
2: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
1: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
3: इंडिया हैज लॉन्च्ड
4: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण

0: संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस,
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन, आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
5: इंडिया स्पेस प्रोग्राम
0: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
5: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम जय भारती में आप सभी फौजी भाइयों का स्वागत है। हमारे फौजी भाइयों के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में आज बात सिर्फ देश और ड्यूटी के नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों की भी जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कभी कोई गीत घर की याद दिलाता है, कभी दोस्तों की शरारत याद आती है, तो कभी किसी अपने का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे खूबसूरत फिल्मी गीत से जिसे सुनकर शायद आपको भी अपने किसी खास की याद आ जाए।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर

0: कड़पड़े भारतीय सेना।
1: कहते हैं संगीत की कोई सरहद नहीं होती। आप देश के किसी भी कोने में हो, कोई गीत सुनते ही मन कुछ पल के लिए वहीं पहुंच जाता है जहां आपकी सबसे प्यारे यादें बसी होती हैं।

उम्मीद है जय भारती का ये संगीत सफर आपको अच्छा लगा होगा। जहां भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत को अपना साथी।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली, कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालयों में भी नए न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। देश के 45 स्थानों पर आयोजित इस मेले के साथ अब तक करीब 12,75,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इधर रांची के CCL सभागार में भी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने रांची केंद्र पर विभिन्न विभागों के 143 सफल युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें रेलवे, डाक विभाग और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की पूर्व मंत्री दिवंगत विमला प्रधान के रांची स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रही कर्मठ राजनेता विमला प्रधान का कल रात एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची की विशेष PMLA अदालत ने बड़गांई जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को शाम 4 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता अविनाश पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री को आज पेश होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण अदालत ने उन्हें वर्चुअली जुड़ने की छूट के साथ 21 सितंबर तक का समय दिया है। इसी दिन उनके खिलाफ आरोप गठन पर बहस होगी।
2: सीएम सर का आज फिजिकल अपीयरेंस था कोर्ट में चार्ज फ्रेम के लिए, लेकिन कोर्ट से ये प्रेयर किया गया कि इनको VC के थ्रू सोमवार को पेश किया जाएगा, तो उस कोर्ट ने उसको अलाउ किया है। सोमवार को इनकी पेशी VC के माध्यम से होगी और कोर्ट अग्रतर कार्रवाई चार्ज फ्रेम भी करेगी। व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए हैं किसी कारण से, प्रशासनिक कार्यों के बदल से सोमवार को आएंगे, VC के थ्रू अपीयर किया जाएगा, चूंकि उनका बहुत सारा

0: प्रोटोकॉल है जो कि पेशी से समय देखना पड़ता है सुरक्षा की दृष्टि से, हर तरह से दृष्टि से।
1: रांची की विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिए जाने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस घटनाक्रम पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भ्रष्टाचार से भरा रहा है और उनके समय में भ्रष्टाचार संस्थागत हो चुका है। इधर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि विपक्ष दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कोर्ट पर पूरा भरोसा बताते हुए उम्मीद जताई कि 21 सितंबर को होने वाली कोर्ट की पेशी में उन्हें न्याय मिलेगा। साहिबगंज में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना किया गया। उपायुक्त दीपक दुबे ने इसे हरी झंडी दिखाई। मौके पर परियोजना निदेशक संजय कुमार ने बताया कि 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण मुक्त कर स्वस्थ बनाना है।
2: पूरे झारखंड 9वें राष्ट्रीय पोषण माह भी को 26 मना रहा है। इसमें कई तरह के चीजें हैं, जैसे हमारे नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र खुले, वहाँ को पोषाहार का वितरण और अभी कई तरह की योजनाएं भी फ्लैक्सी योजनाएं भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो।
1: और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। गीतों के सफर में आपका हम सफर है, आपका रेडियो साथी मनीष। ये पहला गीत आपके लिए फिल्म बालिका वधू से, अमित कुमार की आवाज, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, जिसे संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कभी हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम।

बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहर किस्मत किस्मत में थे लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा।

किसी को पूरी हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम।

तो थोड़ा थोड़ा खुशी भी थोड़ी थोड़ी बाहर मालिक दुख और सुख की खूब बनाई जोड़ी अरे वाह खूब बनाई जोड़ी ओ बेटा जी जीवन का नशा कभी गरम कभी नरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम ओ बेटा जी अरे ओ बाबू जी किस्मत की हवा कभी नरम।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कारवां से आशा भोसले और आर डी बर्मन की आवाज़ों में। रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी जिसे संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। अगला गीत आपके लिए हमने लिया है फिल्म अजनबी से। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं बोल आनंद बख्शी के, जिसे संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन ने।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कश्मीर की कली से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। SS बिहारी के बोल, जिसे संगीत से सजाया OP नैयर ने।

0: ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियां केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योति ग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जन सेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद जी।
2: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
3: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद 2000 स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001 2 और 3 ये 2-3 सालों में रखा गया था, उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
2: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला।
4: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको मान्यता मिली है। तो ये एक गुजरात की तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
2: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें, आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
3: पहले मैं ये जो अस्थानानी जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसके कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है। कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गाँव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांवों में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर 2 सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया, जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
2: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
5: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
2: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आएं, इन्वेस्टर्स आएं, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
4: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब ये क्षेत्रीय पहल बन गया है।

0: अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था, तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं, 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए हैं उनके लिए काफी कुछ, एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
3: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है, यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
0: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक

0: मिट्टी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति की अगर आप एक अवलोकन करें, तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी की जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव-गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वनी के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरिकल कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव-गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी

0: कम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या किरणी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289-094-044।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी। इसमें चर्चा होगी कुपोषण और आपका स्वास्थ्य विषय पर। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्रेयस सिन्हा। इनसे बातचीत कर रहे हैं गौरव कुमार, कंपियर युवराज कुमार और प्रस्तुति प्रभु शरण की है।

0: श्रोताओं नमस्कार, जोहार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कल्याणी और मैं हूं आपका दोस्त युवराज। और कार्यक्रम के इस खूबसूरत सफर में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, जीवन तभी सुंदर और सार्थक बनता है जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रिश्तों को सहजें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालिए और जुड़ जाइए कल्याणी के इस खूबसूरत सफर में। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण चर्चा, भेंट वार्ता और मन को छू लेने वाला मधुर संगीत। तो दोस्तों, दिल थाम कर नहीं बल्कि दिल खोल कर सुनिए अपना कार्यक्रम कल्याणी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय से जो सीधे हमारे स्वास्थ्य और हमारे जीवन से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज का विषय है कुपोषण और आपका स्वास्थ्य। मित्रों, स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन की पहली पहचान है। हम अक्सर सोचते हैं भरपेट भोजन कर लेना ही पर्याप्त है, लेकिन क्या केवल पेट भरने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा और ऊर्जा जैसे पोषक तत्वों का होना भी जरूरी है। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को हम कुपोषण कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुपोषण क्या है। कुपोषण केवल कम भोजन मिलने की समस्या नहीं है, जब शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और संतुलित पोषण नहीं मिलता तो कुपोषण की स्थिति पैदा हो सकती है। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त पोषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपने कभी सोचा है कुपोषण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो मित्रों, कुपोषण का शरीर की ताकत और रोग से लड़ने की क्षमता पर पड़ सकता है। बच्चों में इसका संबंध उनकी वृद्धि और विकास से भी होता है। शरीर कमजोर होने पर व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है और दैनिक कार्यों में भी परेशानी महसूस कर सकता है। कुपोषण से बचने के लिए महंगे भोजन की आवश्यकता हमेशा नहीं होती। हमारे आसपास उपलब्ध कई स्थानीय और सामान्य खाद्य पदार्थ पोषण के अच्छे स्रोत हैं। तो आइए जानते हैं संतुलित आहार आखिर क्यों जरूरी है। दोस्तों, हमारे भोजन की थाली में अनाज के साथ दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दूध या अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शामिल होना चाहिए। परिवार की आवश्यकता के अनुसार भोजन में विविधता लाना जरूरी है। बच्चों के लिए उम्र के अनुसार उचित आहार देना विशेष महत्व रखता है। छोटे बच्चों को समय पर भोजन और आवश्यकता अनुसार स्तनपान कराना भी उनके पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, कुपोषण से लड़ाई केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पूरे परिवार की भूमिका होती है। परिवार में भोजन बनाते समय यह ध्यान रखें कि बच्चों और महिलाओं को भी पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले। साफ सफाई का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले हाथ धोना, साफ पानी का उपयोग करना तथा भोजन को ढककर रखना संक्रमण से बचाव में मदद करता है। यदि किसी बच्चों का वजन या लंबाई उम्र के अनुसार ठीक से नहीं बढ़ रहा है तो बच्चा लगातार कमजोर या बीमार रहता हो अथवा गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी परेशानी हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या योग स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेना चाहिए। तो श्रोताओं, याद रखिए, कुपोषण केवल भोजन की कमी का नाम नहीं बल्कि सही मात्रा और सही प्रकार के तत्वों की कमी से भी जुड़ा है। स्वस्थ परिवार के लिए जरूरी है कि हमारी थाली में स्वाद के साथ साथ पोषण भी हो। आइए हम संकल्प लें कि अपने परिवार में किसी को भी पोषण की कमी का शिकार नहीं होने देंगे। पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और समय पर स्वास्थ्य जांच को अपनी जीवन शैली का हिस्सा भी बनाएंगे। श्रोताओं, अभी आपने सुनी हमारी चर्चा कुपोषण और आपका स्वास्थ्य। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने जीवन और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना। हमारा जीवन प्रकृति का अनमोल उपहार है, इसलिए हमें न केवल अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए बल्कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और समझदारी के साथ भी करना सीखना चाहिए। इसी महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक विशेष भेंट वार्ता। जिंदगी अनमोल है, इसकी कद्र करें। और इस बातचीत में जीवन के महत्व, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अपने जीवन को सुरक्षित एवं सार्थक बनाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस भेंट वार्ता में हमारे साथ है विशेषज्ञ डॉक्टर सुयेश सिन्हा, जिनसे बातचीत कर रहे हैं श्री गौरव कुमार जी। तो आइए बिना देर किए हुए सुनते हैं यह उपयोगी और प्रेरणादायक भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुयेश सिन्हा, जो ऑर्किड हॉस्पिटल रांची के कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और शहर के प्रख्यात मनोचिकित्सकों में इनकी गिनती होती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी अनमोल है, इसकी कद्र करें। ईश्वर ने मानव को ही केवल सोचने और समझने की क्षमता दी है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में भागदौड़ भरी जिंदगी में सोचने समझने की क्षमता ही कई बार इंसान की या मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। व्यक्ति भागता रहता है, दौड़ता रहता है, परेशान होता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता है। और एक समय आता है जब उसको लगता है कि अब जिंदगी का अंत ही उसके लिए एकमात्र मार्ग बचा है। इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर सुयेश सिन्हा सर से। सर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें आज बुलाने के लिए।
1: सर, एक मनोचिकित्सक होने के नाते जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका पहला क्या इंप्रेशन आपके दिमाग में होता है, अगर कोई पेशेंट के तौर पर आपके पास आता है?
2: जी, कभी भी कोई भी मरीज जब किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो पहला हम लोगों का यही उद्देश्य होता है कि जो उसकी समस्या है उसका समाधान करने में हम सक्षम हों और भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि उनको उस परेशानी से या जिस भी वजह से वो हम तक आ रहे हैं उनको उससे हम निकाल पाए।
1: सर, अक्सर देखा गया है कि पहले इंसान जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है तो उस समय उसको ज़्यादा चिंता इस बात की होती है कि हम एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करें। उसके बाद जब वो पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो रही होती है तब चिंता होती है कि अच्छी नौकरी में कैसे जाएं। और ये चिंता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक इस प्रकार की एंग्जाइटी में बदल जाती है कि वो फिर इंसान के व्यक्तित्व से बड़ा हो जाता है। तो इसके विषय में सर आप क्या कहेंगे?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, जहाँ पे आपने मेंशन किया है कि चिंता कैसे एक धीरे धीरे एक इंसान के बचपन में एंटर करती है और फिर उसके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जाके इम्पैक्ट दिखाती है। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि हमेशा जो चिंता है या किसी चीज़ का तनाव है वो नकारात्मक नहीं होता है। उसका आपके लाइफ में आने का उद्देश्य होता है कि वो आपके अंदर से जो पॉजिटिविटी है उसको निकाले, एक चैलेंज की तरह आपके सामने आए और आपको प्रेरित करे कि उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके उस पर जीत हासिल करें और आगे बढ़ सकें। बट अक्सर देखा जाता है कि जो भी चिंता है या तनाव है जब वो एक नेगेटिव वे में हमें इम्पैक्ट करती है तो हमारे सोचने समझने की पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को भी ख़त्म करती है, हमारी ऊर्जा को भी ड्रेन करती है। ऐसी स्थिति में अक्सर हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और एक ऐसे मनोदिशा में पहुंच जाते हैं जहां मन की उदासी और भी मानसिक विकारता जैसे घबराहट, बेचैनी, चिंता, सिर दर्द ये सब होना शुरू होता है और एक समय के बाद हम खुद के इस पूरे परिवेश से इतना थक चुके होते हैं कि हम नकारात्मकता वश अपने लाइफ को खत्म करने के बारे में तक भी सोच जाते हैं।
1: सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब तक हम किसी चिंता को एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे लेते हैं, एक मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं तब तक तो ठीक है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन चिंता जब स्ट्रेस में बदलने लगती है तब परेशानी शुरू होती है।
2: बिल्कुल।
1: सर, स्ट्रेस के क्या सामान्य लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति ये समझे कि अब उसको परामर्श की आवश्यकता है?
2: जनरली स्ट्रेस जब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलम करे या आपके सामने जो स्थिति है वो आपके कंट्रोल के बाहर जाने लगे, आपके रोज़मर्रा के काम की क्षमता घटने लगे, आपके फोकस कंसंट्रेशन में समस्या आने लगे, एकाग्रता की कमी आने लग जाए, नींद की समस्या उत्पन्न होने लग जाए और ये सारी चीज़ें एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक लगातार बनी हुई हो और उसके बाद भी आपको इससे निजात नहीं मिल रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक तनाव वाली स्थिति में हैं जिसमें आपको परामर्श ले लेना चाहिए।
1: सर, अक्सर ऐसा होता है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है, सोशल मीडिया पे पीछे छूट जाने की चिंता भी होती है, क्योंकि सर अब मोबाइल इंटीग्रल पार्ट हो गया है हम लोगों की जिंदगी का। तो जैसे पहले होता था सर कि जिस प्रकार से अगर बटुआ छूट गया, पर्स छूट गया तो बड़ी चिंता होती थी, तो अब पर्स से ज्यादा मोबाइल की चिंता होने लगी है। सर, आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और उससे जो ये नकारात्मक भावनाएं आती हैं, इसके लिए मोबाइल को कितना जिम्मेदार मानते हैं?
2: आई थिंक जैसा हम हमेशा जानते हैं कि पहले भी हम कहते थे कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो एक बून हो सकती है या फिर एक नेगेटिव फॉर्म में भी उसको हम ले सकते हैं, नकारात्मकता की तरफ भी वो लेके जा सकती है। आज से 20 साल पहले फ़ोन में बात ही होती थी, अब फ़ोन में बात भी होती है, बात के अलावा ज़्यादा काम लोग कर लेते हैं rather than बात करने के, और उसमें बाकी चीज़ें ज़्यादा चलाते हैं। तो आई थिंक डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के दौर में, जहाँ पे हर इंसान एक लाइन ड्रॉ करना सीखे कि इसके बाद अब हमें मोबाइल का या किसी भी स्क्रीन का या किसी भी गैजेट का व्यर्थ में इस्तेमाल करने से बचना है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो लाइन ड्रॉ करना सीखें। स्टूडेंट्स के अंदर हम देखने को मिलता है कि वो अननेसेसरी का स्क्रॉल करते हैं रील्स को, जो अगेन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। घंटों सोने के पहले भी वो रील्स देखते हैं, इवन अडल्ट्स के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद पढ़ाई के नाम पे लोग फ़ोन में पढ़ाई तो शुरू करते हैं लेकिन वो एंड अप किसी और चीज़ पे होता है। तीसरी चीज़, आजकल लोग वर्चुअल दोस्ती पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में पोस्ट्स डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं बार बार उसमें जाके कि मेरे कितने लाइक्स आए,
1: वैलिडेशन।
2: बिल्कुल, वो वैलिडेशन वाली टेंडेंसी वर्चुअली हम लोग ढूंढ रहे हैं rather than रियल कनेक्शंस जो पहले हम बनाते थे, उससे हम बच रहे हैं। तो जो ये जो वर्चुअल दुनिया की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक विकार का बहुत बड़ा कारण बन रहा है।
1: सर, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि ये जो आभासी दुनिया है, जो वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, कई बार सर जो अभी आपने वैलिडेशन की बात कही, इसकी वजह से युवा कई बार अपने आप को, अगर उनको लगा कि नहीं मेरी पोस्ट पे लाइक नहीं आया, मतलब वो अपने भीतर कमी ढूंढने लगते हैं।
2: बिल्कुल,
1: ऐसा इसकी वजह से सर कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसीज जो डेवलप होती हैं, तो इसके लिए आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं? युवाओं में ऐसा क्या हो रहा है जो पहले नहीं था अब होने लगा, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हो?
2: आई थिंक समय के साथ साथ इन गैजेटों के ओवर यूज़ के साथ साथ पीयर प्रेशर भी डेवलप करता जा रहा है। आपके दोस्तों को देखते हैं आप किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हुए, तो जिसको एक लर्न बिहेवियर डेवलप करते हैं कि नहीं, अगर कोई इंसान फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व है तो हमें भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं हम ये ज़रूरी समझने लगते हैं। फ़ोन में हम या सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट देखते हैं जिसको देख के लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ को छोड़ के बाकी सबकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, एकदम फैंसी है, एकदम अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो झूठ का पर्दा है वो युवाओं के और इवन हर किसी के आँख के ऊपर से हटना बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो दिखाया जा रहा है वो कितने हद तक सही है, इसका आकलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम लोग रियलिटी और वर्चुअल चीज़ों में डिफरेंशिएट कर पाएँ और रियल लाइफ में उसको कितना इन्वॉल्व करना है और रियल लाइफ वो कितना इम्पैक्ट करे, इस चीज़ से उससे बच सकें।
1: सर, एक और प्रश्न यहाँ उठता है कि अगर ये माइंडसेट की बात अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं सर इसके लिए परवरिश भी उतनी ही जिम्मेदार है, जो एक इमोशनल कनेक्ट जो परिवार के भीतर होना चाहिए।
2: जी,
1: अगर कोई परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे युवा हो या वो एडल्ट हो या महिला हो, अगर वो परिवार के बाहर ढूंढ रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ तो डिस्कनेक्ट है।
2: बिल्कुल,
1: इसके विषय पे सर आप क्या कहेंगे?
2: बिल्कुल सही बात है। पहले के समय में घर में लोग बैठते थे ड्राइंग रूम में या कोई भी कॉमन सिटिंग एरिया में, लोग पूरे दिन पे चर्चा करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि उनका दिन कैसा बीता, क्या समस्याएं आई, क्या अच्छी चीज़ हुई, क्या उनको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या खाया, क्या पिया, सारी चीज़ें आपस में परिवार के लोग डिस्कस करते थे बैठ के। आज की डेट में परिवार के लोग बैठते तो हैं साथ, लेकिन हर कोई अपने फ़ोन से ही ग्लूड रहता है, चिपका रहता है, और एक दूसरे की बात को पूरी कॉन्सेंट्रेशन से भी नहीं सुनते हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि मेरे स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मेरे पोस्ट्स पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, इन चीज़ों पे। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप आ गया है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, दादा दादी और पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ये तीनों जनरेशन के बीच में जो गैप आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी बढ़ा रहा है, बिकॉज हम लोग बने नहीं हैं उस तरह से कनेक्ट होने के लिए, हम लोग वायर्ड नहीं हैं उस तरह से कनेक्ट होने के लिए। तो बीइंग ह्यूमन जो एक हमारा इंट्रिंसिक नेचर है, उससे हम अगर भागेंगे तो तनाव का शिकार होंगे।
1: और जब ये तनाव बढ़ने लगेगा, जब व्यक्ति को लगने लगेगा कि अब हम इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो वो आत्महत्या जैसे बहुत बड़े कदम उठा लेता है, जहां उसको लगता है कि अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया।
2: बिल्कुल
1: सर, एक बात जब युवाओं की बात होती है तो साथ में अक्सर जो एक घर का एक

0: कोना इग्नोर होता है वो है महिलाओं का,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी भी सारी महिलाएं लगभग जो हैं वो वर्किंग नहीं है।
1: जी
0: जो महिलाएं घर में रहती हैं उनमें अवसाद या डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाती हैं। तो महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, किस प्रकार से उनको अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करना चाहिए?
1: आई थिंक जहाँ तक महिलाओं का सवाल है जो वर्किंग नहीं है और घर होम बाउंड ज़्यादा हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी नींद का सबसे अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर महिलाएं सबका ख्याल रखने में अपने आप को पीछे छोड़ जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करें, जिसमें उनका अपना हेल्थ भी ज़रूरी है, उनकी नींद भी ज़रूरी है, उनका अच्छा खान पान भी ज़रूरी है और उनका खुश रहना भी ज़रूरी है। जब तक एक महिला स्वस्थ नहीं रहेगी परिवार स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि परिवार के भी बाकी जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को समझें और ये टारगेट अचीव करने में जो भी घर की महिलाएं हैं उनकी मदद करें। टाइम टू टाइम उनको अपना बात रखने का मौका मिले, चाहे अपने हस्बैंड के सामने, चाहे अपने सास ससुर के सामने, चाहे अपने बच्चों के सामने। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग काम से लौटते हैं, खासकर हस्बैंड और उनकी वाइफ उनसे कुछ कहती हैं, तो आई थिंक इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। आई थिंक परिवार को एक टाइम निकालना चाहिए जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से बात करे, अपने मन की बात खुल के रखे, ताकि एक दूसरे के बीच कनेक्ट भी बना रहे और आपस के एक दूसरे की समस्याओं से भी लोग अवगत रहें और उनका निवारण करने में एक दूसरे की सहायता करें।
0: सर, आपने जो बात बताई कि अभी तक हम लोग अवसाद यानी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या सेल्फ हार्म इन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज पर बात कर रहे थे,
1: जी
0: अब एक सर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर इन सारी चीजों के बावजूद अगर कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाने की ओर बढ़ जाता है, तो क्या ये अचानक से हुआ डिसीजन होता है या वो बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद लेता है? कुछ तो लक्षण उसके होते होंगे।
1: बिल्कुल, आत्महत्या जैसी डिसीजन इम्पल्सिव एकदम से कोई तुरंत से नहीं लेता है। जनरली अगर कोई इंसान सडन इम्पल्सिव एक्ट किया, पहले किसी तरह का कोई डिप्रेशन या अवसाद की हिस्ट्री नहीं है, तो चांसेस दूसरे तरह के मानसिक बीमारियों का ज़्यादा होता है जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल हो सकते हैं। उस पे ना जाते हुए अगर हम सिर्फ डिप्रेशन की लाइन पे अभी बात करें, तो एक इंसान खुद को ख़त्म करने के पहले कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस तलाश चुका होता है ताकि वो अपने परेशानी को सॉल्व कर पाए, और फिर इतना हताश होता है तब जाके खुद को नुकसान करने के बारे में सोचता है। तो ये एज ए समाज हमारा कलेक्टिव दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें कि वो आगे आएं, बढ़ चढ़ के अपनी मन की बात रखें, अपनी तकलीफ डिस्कस करें। अक्सर देखा जाता है कि दोस्तों से लोग कहते हैं पहले, या अपने स्पाउस से, वाइफ से, हस्बैंड से इस बारे में बात करते हैं, या फिर अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं। तो मेक श्योर करना है कि जो भी लोग उनकी बात सुन रहे हैं उस चीज़ को सीरियसली ध्यान से सुने, उनके बात को जज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरी बात कोई सबसे पहले तो सुन ले, आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है जब वो अपने मन की बात खुल के किसी से कह पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग हैं समाज में, वो इस तरह के जो लोग हैं जो खुद को नुकसान करने की प्रवृत्ति में हैं, उनकी बात को सुने, उनकी तकलीफ को सुने और सुनने के बाद उनको समाधान ढूंढने में मदद करें, रादर देन उनको डिक्टेट कर देना कि नहीं इस चीज़ का यही सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। आप उनको गाइड करिए, आप उनको डायरेक्ट मत। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जो कभी छोटा मोटा कुछ अटेम्प्ट करने के बारे में आपसे बोले हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उनको किसी चिकित्सीय परामर्श के लिए प्रेरित करिए या किसी काउंसलर से मिलने बोलिए। अगर क्योंकि ऑब्वियसली आज के समय में सबके पास इतना टाइम नहीं है कि हर समय अवेलेबल रह सके, तो अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि नहीं वो इस तरह से प्लान कर रहा है खुद को नुकसान करने का, चाहे वो हैंगिंग हो या अलग अलग मोडेलिटीज हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर मोडेलिटी के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है, तो बेटर है कि आप जाके उसको किसी चिकित्सक से या किसी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से जरूर मिलवाएं।
0: सर, जो बात अभी आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की कही, तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो कमजोर होते हैं वो आत्महत्या करते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप अपनी समस्या से हर समय लड़ते रहें। यही हम लोग को नहीं करना है कि एक पॉइंट पर आके जब आपको लगे कि अब ये समस्या आपसे बड़ी हो रही है तो वहां से हट जाना चाहिए। सर, एक सीनियर साइकाइट्रिस्ट होने के नाते आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कई दवाएं आजकल सहज रूप से मिल जा रही हैं?
1: अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो नियम से कोई भी ऐसी दवाई जो आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है वो ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में कई जगह ये देखा

0: जाता है, हर जगह नहीं, मेट्रोज में कई जगह काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, बट हमारे शहर में या हमारे राज्य में ये चीज़ बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोग प्रोक्योर कर लेते हैं ऐसी दवाइयाँ जो आपको नींद दिला दें, ऐसी दवाइयाँ जो आपको थोड़े दिन की देर के लिए रिलैक्स कर लें। तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आप एक आम इंसान को अपने शारीरिक संरचना और फंक्शनिंग के बारे में ठीक से पता नहीं होता है, और वो कोई भी दवाई लेना शुरू करते हैं ओवर द काउंटर, तो उसके साइड इफेक्ट होने के रिस्क होते हैं। उसमें उनके ब्रेन के फंक्शंस का एक तरह का हाईजैक का स्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, ओवर सिडेशन की वजह से सांस की समस्या और बाकी हार्ट के रिदम्स की समस्या भी हो सकती है। कभी इस तरह के केस में अगर कोई ओवरडोज कर ले तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए मेरा यही सलाह है कि आप किसी भी चिकित्सक से मिलकर उनकी सलाह के बिना इस तरह की कोई मेडिसिन ना लें।
1: सर, आपका लंबा कार्य अनुभव रहा है, तो आपने कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स जरूर देखे होंगे जो कॉमन तरीके से पॉपुलेशन के भीतर आते हैं, जिनकी सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। कृपया उन इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा
0: जी।
1: बताएं।
0: सबसे पहले तो जो भी इंसान सुसाइड करने के लिए जाता है या इस बारे में सोचता है, वो लंबे समय से तनाव ग्रसित तो रहता है। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो उसके दोस्त या परिवार के लोग देखते हैं उसके अंदर। अक्सर किसी तरह के नशे का सेवन भी इस तरह के लोगों में पाया जाता है, जो अपने परेशानी से निकलने के लिए वो उसको शॉर्ट रिसॉर्ट करते हैं कि शायद अल्कोहल ले लें या और किसी तरह का नशा कर लें और इस परेशानी से हम बच जाएं या उससे थोड़ी देर के लिए निजात पा सकें। तीसरी चीज़ है कि वो अपने रोज के कार्यशैली में उतने परफेक्ट नहीं रह जाते हैं जितना पहले रहा करते थे। चौथी चीज़ है इमोशनल फ्लक्चुएशंस उनमें बहुत देखने को मिलता है, सडन एंगर आउटबर्स्ट, सडन क्राइंग स्पेल्स, रोने की प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा या बहुत कम खाने का टेंडेंसी, ये सब देखने को मिलता है। पांचवी चीज़ है कि इस तरह के लोग अक्सर अपने परिवारजन में या अपने दोस्तों से अपनी समस्या शेयर करते हैं और ऐसा भी अपने इंटेंशन शो करते हैं कि उन्हें लगता है कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, जीवन जीना बेकार है, शायद मर जाए तो अच्छा हो। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो एक आम आदमी में हम लोग देख सकते हैं जो सुसाइडल टेंडेंसी जिसके अंदर डेवलप हो।
1: बिहेवियरल चेंजेस को लेकर के थोड़ा सा इसमें सावधान रहना होगा।
0: बिल्कुल
1: सर, अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास, अपने परिवार में या अपने दोस्तों से अपनी बात नहीं कह पा रहा है,
0: जी
1: तो क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन या इस तरीके के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जहां वो अपनी बात कह सके?
0: जी इस तरह के काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। इस तरह के कुछ सेवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है टेली मानस के नाम से, जहां पे लोग 24 घंटे में कभी भी अपनी समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई है, तो जो भी इस तरह के मरीज हैं, इवन गवर्नमेंट इवन प्राइवेट, जहाँ पे इस तरह के जो भी मरीज हैं जो सडन कुछ इस तरह की भावना लेके प्रकट कर रहे हैं, उनको तुरंत वहाँ रीच आउट किया जा सकता है और उनको ट्रीट किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, आज आपको जानकारी दी गई कि यदि आप किसी प्रकार की चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइडल टेंडेंसी को फेस कर रहे हैं, तो कृपया आप बात करें, अपने आप को इस तरीके से न परेशान करें कि आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी डॉक्टर सुयश सिन्हा और गौरव कुमार के बीच हुई महत्वपूर्ण बातचीत। जिंदगी अनमोल है, इसकी कदर करें। इस बातचीत से यही संदेश मिलता है कि जीवन कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, हमें अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, जीवन अनमोल है और हर दिन अपने आप में एक नया अवसर है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सकारात्मक सोच रखें और आवश्यकता पड़ने पर परिवार, मित्रों तथा योग्य विशेषज्ञों से सहायता और सलाह लेने में संकोच ना करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर सुयश सिन्हा और गौरव कुमार के बीच हुई महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। इन्हीं खूबसूरत भावनाओं को सुर में पिरोते हुए अब हम लेकर आए हैं फिल्म कामचोर का एक मधुर गीत, तुझ संग प्रीत लगाई हो सजना। तो आइए कुछ पल के लिए सुनते हैं प्रेम और अपनत्व से सजा यह खूबसूरत गीत।

तो दोस्तों, प्रेम और अपनत्व से भावों से सजा यह सुंदर गीत था फिल्म कामचोर से। इसे गाया था लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने और संगीत था राजेश रोशन का। तो मित्रों, इस गीत के साथ अब आज के कार्यक्रम कल्याणी के इस सफर को यहीं विराम देने का समय भी आ गया है। मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सबों से विदा लेता हूं और फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए और जीवन के हर पल को मुस्कुराते हुए जीते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कल्याणी, चर्चा थी कुपोषण और आपका स्वास्थ्य, भेंट वार्ता थी जिंदगी अनमोल है कद्र करें, विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुयस सिन्हा, भेंटकर्ता गौरव कुमार, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम साँझ सरगम, 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 5:02 पर युवाणी, चर्चा बारिश का आनंद ले सावधानी के साथ, वर्षा ऋतु में ध्यान देने वाली बातें, डेंगू मलेरिया से बचें, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडेय की, 5:30 पर श्रमिक लोक, महिला श्रमिकों के लिए योजनाएं, बरसात में श्रमिक रखे अपना ख्याल, आज की बचत कल की पूंजी, श्रमिकों के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी, प्रस्तुति प्रभु शरण की, 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। यही आकाशवाणी का नाची केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम साथ सरगम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आप तो ऐसे न थे के इस प्यारे से गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। शब्द रचना है निदा फाजिल की, संगीत है उषा खन्ना।

कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म खानदान से, लता मंगेशकर के स्वर में बोल हैं, नेक्स्ट लियालपुरी के, धुन बनाई है खयाम ने।

0: सेफ्टी ही है गारंटी, क्योंकि पीएनजी है हवा से हल्की। चुनो सही, चुनो पीएनजी। अधिक जानकारी के लिए 06541253000 पर संपर्क करें। अब हर घर बेफिकर विद बीपीसीएल्स पीएनजी।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का ये नगमा, नीरज श्रीधर और कविता सेठ के स्वर में। गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है प्रीतम ने।

अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लव स्टोरी से ये गीत। आवाज है अमित कुमार व लता मंगेशकर की, रचना है आर डी बर्मन की, संगीत है आनंद बक्सी का।

0: और यही संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज सरगम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से अधिक युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। इधर रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विभिन्न विभागों के 143 सफल युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के सभी विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की अधिसूचना के अनुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास और कला संस्कृति तथा खेलकूद विभाग अब मुख्यमंत्री संभालेंगे। राज्य के पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय

किया गया है। प्रशासन के अनुसार कल सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगड़ार में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ आज झामुमो ने राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चतरा, खूंटी और कोडरमा सहित विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। खूंटी जिले की रनिया थाना पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एक समर्थक ब्रिजेंद्र महतो को गिरफ्तार किया है। एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से एक देसी रिवॉल्वर, दो कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। और जामताड़ा पुलिस ने कर्माटाड़ और सोनबाद गांव से चार शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 मोबाइल, 13 फर्जी सिम कार्ड, 6 एटीएम और 2,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं। अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत। 5:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। इसमें आज चर्चा होगी वेक्टर बोर्न डिजीज कितना खतरनाक, डेंगू एवं संक्रमण। भेंटवार्ता होगी डेंगू कारण व बचाव। भेंटवार्ताकार होंगे अशांत फारूक, तकनीकी पर्यवेक्षक वेक्टर बोर्न डिजीज। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। सात बजकर 15 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपका आपकी पसंद। 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। चर्चा के अलावा सुनिएगा संथाली लोक गीत सुराय मुर्मू और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता होगी, साथ ही आप सुनेंगे होलो की सुभाष चंद्र होनहागा और साथियों के स्वर में। 8:00 आप सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 10:00 आप सुनेंगे ट्वेंटीथ एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026 पे। 10:00 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम। 10:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम गजल। 10:30 पर होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम गुलदस्ता का। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा।

श्रोता सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगला गीत है फिल्म सावन को आने दो। गायक लगा रहे हैं यशुदास।

अभी आपने सुना फिल्म चोर मचाए शोर। इस फिल्म का गाना आवाज़ें थी किशोर कुमार की। और आइए सुनते हैं जौहर महमूद इन गोवा। इस फिल्म का गाना आवाज़ें मुकेश की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: संदेश के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। श्रोता, आज सुन रहे थे भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पे। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में फिल्म दो रास्ते का ये नगमा, आवाजें मुकेश की है।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म काली टोपी लाल रुमाल। गायक कलाकार है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगला गीत है फिल्म राजा और रंक से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर।

अपने चाहने वालों को आप कुछ भी सुना दीजिए, हम समझेंगे कि आपने हमारी शादी का तोहफा दे दिया।

0: खुश रहे।
1: इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गांई जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को शाम 4 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री को आज पेश होना था, लेकिन व्यस्तता के कारण अदालत ने उन्हें वर्चुअली जुड़ने की छूट के साथ 21 सितंबर तक का समय दिया है। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर एक्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार

अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि कोयला और आयरन ओर पर अतिरिक्त कर लगाने से राज्य में उद्योगों की लागत बढ़ रही है और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। धनबाद समाहरणालय में अनुसंधान में साइंटिफिक और आईटी विषयों पर 4 सप्ताह के विशेष प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन एसएसपी प्रभात कुमार ने किया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी इंस्पेक्टर और डीएसपी शामिल हुए। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में लोहरदगा की जल सहिया नीता लकड़ा झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे 23 सितंबर को राज्य में जल संरक्षण और प्रबंधन के अपने जमीनी अनुभवों को साझा करेंगी। लोहरदगा के एमएलए महिला कॉलेज में आज कर्मा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। प्राचार्य स्नेह कुमार ने कर्मा को प्रकृति और पर्यावरण रक्षा का अनुपम त्योहार बताया। और मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों के लिए गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जब हम स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कुछ बातें करें वेक्टर बॉर्न डिजीज के बारे में। ये वो बीमारियां हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार संक्रमित जीवों या हम यूँ कहें कि वाहकों या वेक्टर जैसे मच्छरों, पिस्सू और टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलती है। श्रोताओं, अगर हम प्रमुख वेक्टर और उनसे होने वाली बीमारियों की बातें करें तो जैसे मच्छर है जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, जिंका और पीला बुखार होता है। मच्छर यानी काटने से मलेरिया होता है। और मच्छर जो क्यूलेस होता है वो जापानीज बीमारी जिसे हम कहते हैं उससे ग्रसित करता है। और अन्यवाहक हैं बहुत सारे ऐसे जो हैं जिससे हम ग्रसित हो जाते हैं। अगर इन सबों की हम बातें करें तो इनका सामान्य लक्षण जो है तेज़ बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द और बदन दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर चिकते जैसे होना। और अगर हम इसके रोकथाम की बातें करें श्रोताओं, तो मच्छरों से बचाव के लिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। पानी ना जमने दें, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देती हैं। और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर जरूर जरूर से करें। तो इन ये जो हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।

श्रोताओं, जब हम वेक्टर जनित जो बॉर्न डिजीज की बातें करते हैं तो अभी बरसात के बाद जो है डेंगू जो बीमारी है इस पर भी हम कुछ जानकारी ले लें कि डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसका मुख्य लक्षण 101 डिग्री से 105 डिग्री तक तेज बुखार होता है। गंभीर सिर दर्द और आँखों के पीछे दर्द होता है। मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होता है। त्वचा पर लाल चित्ते जैसे आपको देखने को मिलेंगे और जी मचलना या उल्टी आना भी इसके लक्षण हैं। अगर इसके संक्षिप में अगर हम उपचार की बातें करें, प्रबंधन की बातें करें, तो आराम और तरल पदार्थ जो है, जैसे पर्याप्त आराम करें और पानी, जिसे हम कहते हैं ORS, तथा नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें। तेज बुखार और दर्द के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर जाएं और डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

0: उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं, याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मदद के लिए संपर्क करें ऋण पास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। ऋण पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोताओं, कुछ और हम जानकारी ले उससे पहले हम सुनते हैं ये फिल्मी गीत।

0: क्षमा कीजिएगा श्रोताओं, हम ये फिल्मी गीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए, जब हम डेंगू की बातें कर रहे हैं तो इसी पर कुछ और विस्तृत जानकारी लें। डेंगू कारण व बचाव जानकारी दे रहे हैं आसान फारूक, जो तकनीकी पर्यवेक्षक हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज के। श्रोताओं, आज हम जानकारी ले रहे हैं कि डेंगू है क्या, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और इसका लक्षण क्या है, और ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं आसान फारूक, वेक्टर बॉर्न डिजीज के तकनीकी पर्यवेक्षक हैं। तो फारूक जी, सबसे पहले तो हमारा नमस्कार आपको।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि आखिर ये डेंगू है क्या।
1: डेंगू एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मच्छर जनित रोग। मच्छर जनित रोग बहुत सारे होते हैं, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगी, चिकनगुनिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, उसमें एक डेंगी है। डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, और ये मच्छर द्वारा फैलने वाली वायरल डिजीज़ है, और इसका जो वेक्टर होता है वो एडिस एल्बोपिक्टस, फीमेल एडिस एल्बोपिक्टस। अगर संक्रमित फीमेल एडिस एल्बोपिक्टस अगर किसी व्यक्ति को काटती है तो संक्रमण फैलाती है। मलेरिया में मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण संक्रमण फैलता है, इसमें फीमेल एडिस एल्बोपिक्टस के द्वारा फैलता है। मलेरिया में अगर मादा एनोफिलीज मच्छर किसी को संक्रमित करती है तो एक ही आदमी को बाइट करती है, फिर रेस्ट करती है, उसका अलग है। लेकिन डेंगू ऐसा है कि कोई फीमेल संक्रमित मच्छर है एडिस, अगर 1000 का भी पॉपुलेशन वहाँ पर है, लोग हैं, अगर काटेगी तो एक साथ कई लोगों को इन्फेक्ट कर देती है। जब संक्रमित एडिस मच्छर किसी को इन्फेक्ट करती है, संक्रमित करती है, तो वहाँ से लेके 4 से लेके 10 दिन तक उसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है। 4 से 10 दिन में उसको कुछ लक्षण मिलते हैं, और शुरुआती जो लक्षण होता है अन्य मलेरिया के जो लक्षण होते हैं उसी तरह से मिलता जुलता है। फीवर आना, हेडेक होना, वॉमिटिंग होना, बदन हाथ में दर्द होना, है ना, ये सब लक्षण है। तो शुरुआती लक्षण जो है मलेरिया और डेंगू का सेम है।
0: अच्छा।
1: इसके 3 फेज होते हैं, डेंगू फीवर, अगर वो फीवर डेंगू के कारण है तो डेंगू फीवर होगा, है ना। लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग अगर ऐसा सिम्टम आता है किसी भी तरह का, अगर हेडेक हो, फीवर हो, वॉमिटिंग हो, या नौजिया हो, या उल्टी उल्टी लग रहा है या हो जा रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, बदन हाथ में दर्द हो, तो सबसे पहले हम लोग उसको मलेरिया की जांच करवाना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर उसमें नकारात्मक होता है, नेगेटिव आता है, तब हम लोग फिर सोचना है कि फिर वो हो सकता है कि डेंगू हो। तो अब

0: चार से दस दिन तक इसका इनक्यूबेशन पीरियड है, एक से तीन दिन में ये लक्षण मिलेगा, चार से और अगला जो है पाँच से सात दिन में ये क्रिटिकल होता है। डेंगू फीवर जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ते कारण वो क्रिटिकल फेज में चला जाता है, जिसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: जब डेंगू हेमोरेजिक फीवर में की अवस्था होती है तो सिम्टम कुछ और गंभीर होते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके बाद क्या हाई फीवर होगा, लोगों को हाई फीवर हो जाता है डेंगू के कारण। हाई फीवर बोले तो 103 104 डिग्री फारेनहाइट तक हो सकता है, और तेज सर दर्द होगा, बहुत एक्यूट हेडेक होगा। और जब एक्यूट हेडेक होगा, बदन हाथ में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, उल्टी उल्टी लगेगा, उल्टी होगा, ये उल्टी होगा डेंगू हेमरेजिक फीवर में, जिससे और आगे दिन गुजरते जाएगा तो डेंगू हेमरेजिक फीवर इसमें जो है वॉमिटिंग भी हो सकता है, और खून की उल्टी हो सकती है, मसूड़ा से खून निकल सकता है, थूकने से खून निकल सकता है, पॉटी जब लोग करते हैं तो उससे खून आ सकता है।
1: अच्छा।
0: और बदन में रैशेस हो सकता है, बाह में चेस्ट में जो है लाल लाल चकता चकता दाना हो जाता है, बिल्कुल नीला हो जाता है, वो हेमरेजिक होता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है, और रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँख के पीछे इतना दर्द होता है कि आँख घुमाना मुश्किल, ये मेन लक्षण है।
1: अच्छा।
0: अगर आँख में दर्द है और आँख के पीछे दर्द है, इतना दर्द कि आँख को घुमाना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग समझ जाना चाहिए कि ये डेंगू के लक्षण गंभीर अवस्था में हैं। अगर तेज फीवर है, बार बार आ रहा है, वोमिटिंग ब्लीडिंग हो रहा है, मसूड़ा से खून आना, नाक से खून आना, तो ये गंभीर अवस्था है। ये जो क्रिटिकल फेज होता है पाँच से सात दिन, तीन दिन बहुत क्रिटिकल होता है। अगर इसको हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और इसको अगर हम लोग डॉक्टर से संपर्क करके अगर इलाज करवाएंगे, तो फिर हम लोग आगे जो है DHSF होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, लोग जो है अनकोमा में चले जाते हैं, शॉक सिंड्रोम हो जाता है।
1: अच्छा।
0: ये तीन फेज है। तो पहला डेंगू फीवर साधारण है, जैसे जैसे अगर हम लोग तत्काल जो है मलेरिया का जांच कराना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और सदर हॉस्पिटल में या किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वहाँ इसकी पुष्टि होगी।
1: अच्छा।
0: वहाँ एलाइजा टेस्ट से ही पुष्टि होती है, IgM IgG, और ये एलाइजा टेस्ट जो है हमारे DPH लैब में सदर हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है, चाइबासा में, पश्चिमी सिंहभूम, सिर्फ एक ही जगह।
1: अच्छा।
0: वो कन्फर्म करेगा कि डेंगू है या नहीं, तो वो टेस्ट कराना ज़रूरी है। बिना टेस्ट के जो है एंटीबायोटिक या कोई भी दवा, दूसरी दवा नहीं खानी चाहिए। अगर मलेरिया नेगेटिव है तो हम लोग को देन हम लोग को मूव करना चाहिए, डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए, है ना, और कराना चाहिए, तब जाके पुष्टि होती है। और उसके बाद आगे चलकर जो है ये उस पीरियड में रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आँख के पीछे बहुत दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जॉइंट्स पेन, उल्टी होना, वोमिटिंग, खून के साथ उल्टी होना, मसूड़ा से खून आना, पॉटी में खून आना, ये सब बहुत गंभीर लक्षण है। तो इस स्थिति में हम लोग को डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आप जानते हैं कि एक वायरल डिजीज़ है, इसलिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है।
1: अच्छा।
0: लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ही इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर डेंगू की पुष्टि होती है तो अपने से मेडिकल में जाकर कहीं भी एंटीबायोटिक वगैरह लेना नहीं है, सिर्फ फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल मैनेजमेंट ही इसका सबसे मेन उपाय है।
1: अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि उनके लक्षण भी आपने बता दिए, तो इसका बचाव हम कैसे करें?
0: इसका बचाव है कि ये डे बाइटर होता है, और ये ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसको, डेंगू को, और ये डे इसकी जो इसका जो मच्छर होता है एडिस एल्वोपिक्टस, ये डे टाइम में ही लोगों को बाइट करता है। तो हमको चाहिए कि दिन के साथ, अभी जैसे डेंगू का मानसून, पोस्ट मानसून में इसका प्रकोप बढ़ जाता है, अभी जैसे डेंगू के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग का बचाव वही है कि दिन के समय भी हम लोग को फुल बांह का कपड़ा पहनना ज़रूरी है ना, और नीचे लोअर में भी या ऊपर में भी फुल बांह कपड़ा। दिन में भी अगर हम लोग सोते हैं, रेस्ट करते हैं, तो मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। अगर मान लीजिए एंडेमिक एरिया में, जमशेदपुर या कहीं और जाते हैं जहाँ एंडेमिक है, वहाँ से अगर आते हैं तो हमको निगरानी में रहना है, ताकि लोग दूसरे को उससे वो प्रसरण ना हो, ये एक मेन है। दूसरी बात है कि इसका इसकी जो मच्छर होती है, फीमेल एल्वोपिक्टस, एडिस एल्वोपिक्टस, ये जो है इसका प्रसरण जो है साफ पानी में होता है।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल साफ पानी में, थोड़ा सा भी पानी अगर मिलता है तो वहाँ से इसका प्रजनन शुरू हो जाता है।
1: अच्छा।
0: अगर पानी ना मिले इस मच्छर को तो एक साल तक भी ये जीवित रहता है, लेकिन एक साल के बाद अगर फिर पानी मिलेगा तो फिर वो प्रजनन शुरू हो जाएगा। तो पानी के जल जमाव ना होने दें, अपने घर के अंदर, घर के बाहर और जिस कंटेनर में हम पानी पीने का रखते हैं इस्तेमाल के लिए कुछ और रखते हैं, वो फ्रिज के अंदर जो पानी जो रहता है वो गमला में जो पानी है वो टायर में ट्यूब में अपने घर के आसपास बिल्कुल जो है इस तरह का प्लास्टिक या नारियल का खोल या फिर टायर का टुकड़ा या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ कोई भी कंटेनर ना हो जिसमें पानी जमा हो, तो उसको अगर जमा है तो उसको हम लोग को पानी को हटा देना होगा, पलट देना होगा। और घर में जो हम लोग पानी यूज़ के लिए रखते हैं वो पानी को सप्ताह में एक बार ज़रूर हटाना है, पूरे पानी को खाली कर देना है, उसमें धूप देना है और साफ़ कपड़ा से है उसके अंदर का पूरा सरफेस को पूरा सतह को जो है रगड़ के साफ़ करना है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ पानी अगर हम डाल दें धूप देखा तो नहीं, उसका अंडा जो है उसका सरफेस में चिपका रहता है। अच्छा। जब वाइट कपड़ा सफ़ेद कपड़ा से अंदर हम लोग साफ़ करेंगे तो देखिएगा काला काला काला धब्बा वो उसके अंडा होता है, तो इसलिए साफ़ करना ज़रूरी है। तो ड्राई डे एक दिन हमको मनाना ज़रूरी है, सप्ताह में एक दिन हम अपना आदत में शामिल करें कि एक दिन हमको पूरा कंटेनर को साफ़ करना है, आसपास की चीज़ों को साफ़ करना है, कहीं पानी जमा होने नहीं देना है। जहाँ पानी जमा होगा इसका प्रदूषण होगा।
1: अच्छा, जैसे हम मलेरिया की बातें करते हैं ये तो उसी की तरह अब बात कर रहे हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग हमारे श्रोताओं को करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और दिन के समय भी करना चाहिए। अभी जैसा डेंगू का प्रकोप चला हुआ है तो दिन के रात में तो करना ही चाहिए। रात में अगर करते हैं हम तो मलेरिया फाइलेरिया अन्य बीमारियों से बचेंगे, कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह से बचेंगे। दिन में भी इस वक्त हमको चाहिए प्रिकॉशनली कि मच्छरदानी का ही प्रयोग करें, फूल बांह का कपड़ा पहने, जो हाथ पांव खाली है वहाँ पर छोटे बच्चों को खास करके गर्भवती महिलाओं को बूढ़े बुजुर्ग लोगों को जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो जो हार्ट के पेशेंट है वो जो कोम और बेबिटिड है और भी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं इन लोगों को खतरा ज़्यादा है। ऐसे तो सबको खतरा है लेकिन जो कोम और बेबिटिड और बीमारी से ग्रसित हैं उनको ज़्यादा खतरा है डेंगू से। इसमें जो है इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं और हमको चाहिए सबसे मेन चीज़ है अगर डेंगू का लक्षण की पुष्टि होती है तो हमको अपने बॉडी में जो है पानी की कमी नहीं होने देना है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। अगर पानी की मात्रा खूब बढ़ाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, लिक्विड इंटेक करना है ज़्यादा लेते हैं तो आगे चल कर वो स्लाइन वलाइन की नौबत नहीं आएगी। अगर हम अपने बॉडी को पूरा डिहाइड्रेट होने से बचा लें तो डेंगू से बच जाएंगे। और अगला जो इस गंभीर पीरियड जो बताएं 5 से 7 दिन, इस पीरियड में आप जितना भी प्लेटलेट काउंट कराइए हमेशा आपका गिरा ही रहेगा। तो प्लेटलेट इसमें काउंट नॉर्मल व्यक्ति का 150,000 होता है लेकिन डेंगू का जब लक्षण होता है तो प्लेटलेट काउंट, ऐसे भी आपको कोई इन्फेक्शन है तो प्लेटलेट काउंट होगा तो 1,60,000, 70,000, 40,000, 30,000 तक भी आ सकता है। इस तो घबराने की बात नहीं है, 3 से 5 दिन हम अपना पानी का इंटेक को बढ़ाएं, नारियल पानी पिए, लिक्विड की मात्रा बढ़ाएं, पानी को खूब पिए, तो अगर पानी की मात्रा बढ़ेगा तो हमको गंभीर अवस्था से हम बचेंगे और आगे जो है वो इसका परिणाम अच्छा होगा।
1: एक बात हम जानना चाहेंगे कि हमारा ये क्षेत्र है ये मलेरिया जोन कहा जाता है और ऐसे में डेंगू की बीमारियाँ भी लोगों को होती रहती है, तो ऐसे में सरकार की ओर से आपके विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: स्वास्थ्य विभाग से लोगों को जागरूक किया जा रहा है हर जगह, ग्राम गोष्ठी के वजह से स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम और जहां मौका मिल रहा है वहां लोग हमारे जो है हेल्थ पर्सनल जो है जो भी NM दीदी है सहिया CHO MPW इनके माध्यम से जो है ग्राम गोष्ठी की जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है इसके प्रति और स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत भी लोगों को और स्कूल के शिक्षकों के शामिल करके PRI मेंबर को इसमें जोड़कर गांव के मुखिया मुंडा को के साथ सब मिल के हर तरह की गोष्ठी में सब लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि इससे बचा जाए। पहले तो ये अर्बन डिजीज़ होता था लेकिन अब तो कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है कि हमारे बगल में जमशेदपुर रांची पटना ये जो है पूरा जो है डेंगू से एंडेमिक क्षेत्र है, अगर आना जाना इतना आसान हो गया कि लोग कल पटना में है तो आज हमारे सदर के किसी भी गांव में भी आ सकता है, अगर इन्फेक्शन है तो वो तुरंत इससे फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति एंडेमिक एरिया से नॉन एंडेमिक एरिया में अगर आता है डेंगू प्रभावित इलाके से अगर इस एरिया में आता है तो उसको अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए और ऐसा कोई सिम्टम है तो तुरंत आइसोलेशन खुद को कर ले, मैंने मच्छरदानी के अंदर कर ले, तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य उप केंद्र में या सदर हॉस्पिटल में आके तुरंत संपर्क करके अपना उपचार सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं तो उसके कारण जो है ये प्रसरण और बढ़ेगा।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद रमेश जी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो इसके साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे ये निर्वेश दास को विदा दें। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पे। और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
4: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
5: कंडोम,
4: गर्भ निरोधक गोलियाँ,
6: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
7: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
8: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
7: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
8: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
7: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
9: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाएं स्वास्थ्य जानकारी।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने 143 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री को बड़गांई जमीन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने 21 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश, मिली वर्चुअली जुड़ने की छूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री ने उठाई राज्य के हितों की आवाज। खनन सेस अधिकार और जीएसटी क्षतिपूर्ति

0: नियुक्ति की बहाली का किया आग्रह। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कल सिमडेगा के पैतृक गांव बगडांड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने आज 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इधर राजधानी रांची के CCL सभागार में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विभिन्न विभागों के 143 सफल युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है मोटे अनाजों के उत्पादन उपभोग और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
2: राज्य के ग्रामीण इलाकों में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और किसानों की आजीविका को मजबूत करने में केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना वरदान साबित हो रही है। 1 फरवरी 2023 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य मड़ुआ, ज्वार और बाजरा जैसे पोषक अनाजों को बढ़ावा देना है। योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है,
1: मिलेट एक प्रकार से एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी सेवा करते हैं।
2: राज्य का रामगढ़ जिला इस योजना के क्रियान्वयन में एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। यहाँ कम पानी में मड़ुआ यानी रागी की बेहतरीन खेती हो रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना और पोषण अभियान के तहत अब ये पौष्टिक आहार सुदूर गांवों की थाली तक पहुँच रहा है, जिससे स्थानीय किसान सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।
3: श्री अन्न योजना जो है मोदी जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि एक स्वस्थ भारत से स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और स्वस्थ शरीर से एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। श्री अन्न जिसे हम लोग भूल चुके थे, इसे उगाने में ही उतनी ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है और हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं मोदी जी का।
2: स्पष्ट है कि कम लागत और प्रचुर पोषण वाली ये श्री अन्न योजना रामगढ़ सहित पूरे राज्य के सुदूर गांवों में स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बना रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रामगढ़ से KK तिवारी के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: रांची की विशेष PMLA अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़गाई जमीन मामले में 21 सितंबर शाम 4 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। व्यस्तता के कारण आज पेश न होने पर कोर्ट ने उन्हें वर्चुअली जुड़ने की छूट के साथ यह मोहलत दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के आर्थिक हितों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए पिछड़े राज्यों को विशेष वित्तीय सहयोग मिलना अनिवार्य है।
4: विगत एक वर्षों के अंदर जो केंद्र की नीतियां रही हैं, खासकर आर्थिक नीतियां, उससे झारखंड को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे GST रेस्टलाइजेशन में 4,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष झारखंड को नुकसान रहा है और अभी MMDR एक्ट में अमेंडमेंट से वो राशि अब हम शेष के रूप में नहीं ले सकते।
0: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के सभी विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवंटित किए गए हैं। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की अधिसूचना के अनुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, नगर विकास तथा कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग अब मुख्यमंत्री संभालेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। एमएमडीआर संशोधन बिल के खिलाफ आज झामुमो ने राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चतरा, खूंटी और कोडरमा सहित विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया। जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर एक्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है।
5: तो विषय की एमएमडीआर एक्ट जिसकी झारखंड सरकार विरोध कर रही है, एमएमडीआर एक्ट जो है भारत सरकार ने पार्लियामेंट से बिल पारित किया और राष्ट्रपति का भी उसमें हस्ताक्षर हो गया, यानी कानून बन गया। वो झारखंड के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए वो कानून।
0: राज्य के पूर्व मंत्री विमला प्रधान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने का निर्णय लिया गया है। कल सुबह 10 बजे सिमडेगा जिले के पाकरटांड़ प्रखंड स्थित उनके पैतृक गांव बगडाण में पालामाड़ा नदी तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की पूर्व मंत्री दिवंगत विमला प्रधान के रांची स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को राज्य की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
6: मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो विधायक हैं, मंत्री हैं। अगर मुझे ऐसा लगा तो मुझे लगता है कि आम लोगों के साथ भी उनका जो व्यवहार रहा है, निश्चित रूप से एक बहुत दुखद और मर्माहत करने वाला ये घटना आज हम लोग देख रहे हैं। असामयिक निधन सभी को पीड़ा देता है और आज इस दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ हम हैं।
0: राज्य के 28 सदस्यीय तलवारबाजी टीम आज जम्मू के लिए रवाना हो गई। यह टीम आगामी 23 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाली चाइल्ड अंडर 10 और मिनी अंडर 12 नेशनल तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 20वें रोजगार मेले में देश भर के 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। रांची में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने 143 युवाओं को दी नौकरी की सौगात। मुख्यमंत्री को बड़गांई जमीन मामले में विशेष पीएमएलए अदालत ने 21 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का दिया निर्देश, मिली वर्चुअली जुड़ने की छूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को दी मंजूरी। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा संभालेंगे जिम्मेदारी। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में झारखंड के वित्त मंत्री ने उठाई राज्य के हितों की आवाज। खनन, सेस अधिकार और जीएसटी क्षतिपूर्ति की बहाली का किया आग्रह। और राज्य की पूर्व मंत्री विमला प्रधान को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। कल सिमडेगा के पैतृक गांव बगडांड में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
8: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
7: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
8: बहन पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
7: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
9: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
10: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड जनहित में जारी। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
11: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
12: कंडोम,
11: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
13: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
14: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
15: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
16: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
17: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: क्षेत्र भ्रमण के दौरान लातेहार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया का पक्षधर है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि
2: हेमंत सोरेन की सरकार आई तब से नौजवानों को ठगने का काम तो किया ही था, लेकिन जेपीएससी में और नियुक्ति घोटाला के तार सत्ताधारी दलों के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उनके मंत्री और उनके कई विधायक इस मामले में दोषी हैं।
1: लातेहार जिला पुलिस ने खाना बदोश परिवार के चार चोरों को 1,07,000 रुपए नगद एवं चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरोह का खुलासा करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि यह गिरोह दिन भर सामान बेचने के नाम पर सुने घरों की रेकी करता है और रात में चोरी की घटना को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि
3: विगत डेढ़ महीने में जो भी चोरी घटनाएं आसपास के क्षेत्र में हुई है उनमें उनकी सहायता रही है और मुख्यतः ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं।
1: एसआईआर के दौरान फॉर्म 7 के माध्यम से मतदाताओं को नाम हटाने का आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया है। इसके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस मामले पर झामुमो के राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा कि
4: हाँ, एक मामला बाचकुम का आया है जिसमें लगभग 140 लोगों का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भर के और कुछ लोगों के द्वारा उसको भेजा गया बीएलओ के पास। बीएलओ ने इनकार किया उस पर सिग्नेचर करने से।
1: इस मामले पर प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार ने कहा कि
5: इसमें दुविधा की कोई बात नहीं है। जैसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा 11 प्रकार का दस्तावेज का सूची दिया गया है जो सभी एआरओ के पास है, ईआरओ के पास से सभी बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो उनके पास उपलब्ध है वो बीएलओ को दें और अपना नाम जुड़वाएं, उसमें कोई दिक्कत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस पर सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम गांव में भी चलाया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि
6: नरेंद्र मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद हमारे देश में ऐसे कई निर्णय लिए गए, कई ऐसी स्कीम्स को पास किया गया जिससे भारत में आम आदमी की जिंदगी में काफी सुधार आया है।
1: राष्ट्रीय जनता दल की लातेहार जिला कमेटी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलनरत है। लातेहार जिले के बरवाडी में अगले शैक्षणिक सत्र 2027-28 में केंद्रीय विद्यालय संचालित होने लगेगा। इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यहां केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग पिछले एक दशक से की जा रही थी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
0: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहे अमराटोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू। छोटा निमटी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी, रोहन कुमार। गाँव कीता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, राजेश महतो, अमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, सुमित गोप, विकी गोप, सुनीत गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप, आराध्या गोप, खुशी गोप, माहिर गोप। गाँव कोयड़ा से पौंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा। चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा महतो, मनमहिनी महतो, दीनबंधु। तुरीटोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी। आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। कुचाई बिदरी से केपी सेठ सोय, सरिता सोय, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सुराबेड़ा से बासिंग सरदार, वीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मन की आंखें। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगली पसंद आप सबों की, बड़ा बम्ब सुपाई थाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा कुमारी, प्रकाश तांती, ललित प्रधान और देवेंद्र जी, ग्राम के लिए लोहर से कोमल बेसरा, बसंती अन्नू, बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा कला कांजी गांजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय, खसवा पतिसाई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनवा गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मखरू आचार्य, चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद, बड़ा निमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार, बड़ी बाजार चाईबासा से मोजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नभिया, बड़ी बाजार चाईबासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रखवाला का ये नगमा, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

इस गीत को सुन चाह इस गीत को सुना चाहा है वसुंधरा कॉलोनी से इंटू लचाईवासा से भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल कुमार मधुर, प्रशांत कुमार मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पपी भाटिया, बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, कांछा और अरब, उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य, महाली से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणी महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली, शांति महाली, महुलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नु, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान। इसके साथ ही हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी।
1: एहोब अकना तेहेंया चासबास आखड़ा किसान वाणी। नवा आखड़ा बन अंजोमेआ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार होते थे। किसान वाणी अंजोमे सनाम चासी बोया मिसी को आलिन सुनीता हांसदा
2: और आशा मनी गुप्का
1: जोहार। चासी बोया मिसी को चेलेका मेना पेया आसाय दलिन बेस तेगे बुगी तेगे जिते को सनाम को गे मेना पेया और जावलेका गे आपेया कुरुमुटु कामी कोरे ब्यस्त मेना पेया। मा नवा आशा इदी काते गे तेहेंया आखड़ा लिन एहोबेआ और जावलेका गे जहां अबो आखड़ा एहोब रेबोन अंजोमा चर्चा तेहेन हो चर्चा लिन अगु हुका कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक का प्रयोग मेन लेखान अबोआ चासबास कामी रे नेतो समय रेया चेद लेका तरीका से चेद तकनीक को बोन लगाव या नोआ विषय इदी काते लिन चर्चाया। चासी बोया मसी को नेतो बोन नेलेट गिया जहां पहिल अबो हुड़ु काड़ा कोते बोन नाहेले तहें कना अणगम कोते बोन समतले तहें कना लेकिन नेतो जहां लेका अबोआ दिसोम रे आधुनिक यंत्र को विकास हुयु कना ओना इदी काते तहें दो अबो नाहेल खोज ढेर ट्रैक्टर को बोन प्रयोग रे बोन इदी या अबो नाहेल लागी ट्रैक्टर कोते गे जहां लेका जहां बोन मेने अबो हुड़ु को एर माड़ांग बोन अबो हासा को बोन पलटी या ओना जेते कमी को अबो नितो ट्रैक्टर ते बोन ट्रैक्टर या आर जहां काढ़ान लागिन हो नितो दो होड को ट्रैक्टर को गे को प्रयोग रे को अगुई या आर ओना साव साव ते अडी ई लिकन चीनीस हो जहां ड्रोन तकनीक को मेना नितो दो अबो जहां पहिल पाइप ते बोन छिड़को तहे कना रासायनिक खाद को से रान को नितो दो ड्रोन ते को अरेज या ड्रोन ते को तिरपी या आर सिंचाई लागिन हो नितो दो टपक विधि से स्प्रिंकलर सिंचाई को मेन या ओना ते सिंचाई हुयु कना आर सेंसर ते मेन लेखन अबो हासा रे तीनक गान दा आ मेना आ तीनक दरकार मेना आ ओना सेंसर ते नपाव कते खेत रिया जहां स्थिति मेना आ ओना रिया जानकारी को दी या आर जहां लेका नितो पूर्व अनुमान हुयु कना मौसम रिया अबो मौसम नितो चेलेका जापुदाय से सितुंगा ओना को जेते अबो नोआ मौसम पूर्व अनुमान ते बोन बड़ाय कते बोन चासबास या आर बायोटेक्नोलॉजी जहां अबो तिजु को ना दारे को रे तिजु को इय ना से रोहड़ दारे को मेना ओना चे लेका बोन इय दाढ़े आ ओना बायोटेक्नोलॉजी ते को बड़ाय दाढ़े आ कना मेन लेखान पूरा कामी अबो जहां तना चासबास कामी बोन कामी अने तो आधुनिक तकनीक ते बोन इदी या।
2: बिल्कुल सुनीता जी, कृषि कार्य में आधुनिक तकनीक के आ जाने से कृषि कार्य काफी सरल और आसान हो गया है और इससे अब समय की भी बचत हो रही है और इससे लागत दोनों की बचत हो रही है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर जैसे मशीनों से जुताई, बुआई, कटाई का काम बहुत ही कम समय में हो जाता है। टपक बूंद सिंचाई के माध्यम से फसलों को पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुँचाया जाता है, इससे हम देखते हैं जल की भी बचत होती है। और ड्रोन के माध्यम से छिड़काव किया जाता है फसलों में लगने वाले रोग कीटनाशकों से बचाने के लिए। पहले होता था कि हाथों से ही हमारे किसान भाई बहन छिड़काव करते थे, लेकिन अब काफी आसान हो गया ड्रोन के माध्यम से। इसके साथ ही सेंसर मशीन के माध्यम से मिट्टी की जांच की जाती है और हम देख रहे हैं समय के साथ कृषि कार्य में काफी बदलाव आया है। और इसके साथ ही सुनीता जी, हमारे किसान भाई बहनों को कृषि यंत्रों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं चल रही हैं जिसमें हमारे किसान भाई बहन अपना कुछ अनुदान लगाकर, जिसमें सरकार भी अपना अनुदान देती है और इसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों को कम लागत में उन्हें कृषि यंत्र उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ऐसे में जो कृषि कार्य है वो काफी आसान हो गया और हमारे किसान भाई बहन काफी अच्छी तरह से कृषि का कार्य कर रहे हैं।
1: सरी कथा गे चासी बोया मिसी को नेतो जुदी अबो आधुनिक यंत्र से तकनीक बोन प्रयोग खान अबो कामी रे हो कुरुमुटु बोन दाढ़े आ आर समय हो तबोन बचे आ आर तीनों अबो होड़ को बोन आचू कते पैसा टका को बोन एमेट कुआ उना हो तबोन बचा। मेनखान जुदी नवा आधुनिक तकनीक रिया जानकारी आरोप दी सनापे कना एनखान अबोआ सुर कोरे जहां प्रखंड को से ब्लॉक को मेना ओंडे चलाव कते हो आपे नवा रिया जानकारी पे इदी दाड़े हा। तो नवा चर्चा नोडे गिलिन मुचद या आर लहासे लिन चला कना चासी बोया मिसी को नितो लिन अंजम होचो बोना लक्ष्मी हेसा आर सांतिन को सपड़ा वकान नवा होलोग गीत।

0: किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे हो लोकगीत का लक्ष्मी हिस्सा व साथियों के स्वर में। सुनीता जी, हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई बहनों को यह लोकगीत बहुत ही पसंद आया।
1: सही है,
0: आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
2: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है, यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है। मौसम और जलवायु दोनों को मापने के लिए एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, तापमान, बारिश, हवा, आर्द्रता और दबाव। लेकिन हम मौसम का अनुमान सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही लगा सकते हैं, जबकि जलवायु हमें दीर्घकालिक रुझान देखने में मदद करती है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। दुनिया का सबसे पुराना तापमान रिकॉर्ड नेदरलैंड्स में बना, वो भी सन 1700 में।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
4: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
3: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
5: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
3: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
6: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
3: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
7: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
3: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
1: मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ।
3: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
3: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।
0: कार्यक्रम किसानवाड़ी में आप सबका पुनः स्वागत है।
9: चासी बुहा मिसी को नितो बोन आंजम के अमित बार किछु संदेश को नवा संदेश तायम दिला आरो लहा सेट बोन मड़ांग वा आर तेहें बोन आंजमा भेंट वार्ता कृषि उपकरणों की देखभाल मेन लेखान चेलेकान अबो नितो आधुनिक तकनीक रिया लिंग गपल मरा बोना ओनारे चेलेकान उपकरण बोन इस्तेमाल या से चेलेका ओनारिया प्रयोग बोन इदिया ओना चेलेका देखभाल बोन दोहो दड़ेया ओना इदिकाते नोआ रिया जानकारी किन एमाबोन कना दयानंद कुमकार अबोई चासी बोहा गे आर उनकिन सला गपल मराव रे मेना किना आसा मनी गोप तो दिला बोन अंजम लिया नोआ भेंट वार्ता।
10: किसान भाई बहनों, आज हम जानकारी लेंगे कृषि यंत्रों का रखरखाव। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई बहनों से दीजिए।
11: जी आशा जी नमस्कार। मेरा नाम दयानंद कुंभकार है और मैं खरसवा का रहने वाला हूँ और अभी पैसे से मैं किसान।
10: आपका हम कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोहार।
11: जोहार आशा जी और हमारे सभी किसान भाई बहनों को भी हमारा जोहार।
10: इन दिनों हमारे किसान भाई बहन कृषि का ही कार्य कर रहे हैं तो आज हम जानेंगे कृषि कार्य में किस किस तरह के यंत्र काम में आते हैं।
11: जी तो कृषि यंत्र में आशा जी पहले तो हम लोग ज्यादातर हल का उपयोग करते थे।
10: जी
11: जो बैल से अपना हल जोतने का कार्य, लेकिन हाल में अभी हम लोग आधुनिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर हुआ, पावर ट्रिलर हुआ, स्प्रे मशीन भी अभी जो बैटरी से चलती है, जैसे स्प्रे मशीन भी आ गए हैं अभी बाजार में। जैसे रोटोवेटर हुआ, इनका प्रयोग कर रहे हैं। और पंप सेट के जगह जो डीजल पंप सेट होता है, इसके जगह पे अभी हम लोग सोलर आधारित जो वाटर पंप सेट होता है या समरसेबल जिसको कहेंगे हम लोग, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से डीजल वाला जो पंप सेट है इसमें हमारा खर्चा भी ज्यादा आता है और सोलर चलित जो वाटर पंप सेट होता है इसमें हम लोग का खर्चा भी कम आता है
10: जी।
11: और पर्यावरण के लिए भी काफी उपयुक्त और अनुकूल माना जाता है।
10: जो यंत्र आ गए हैं इसके माध्यम से कृषि कार्य में काफी सहायता मिल रही है हमारे किसान।
11: जी जी।
10: इन यंत्रों का उपयोग कैसे करें हमारे किसान भाई बहन?
11: देखिए ट्रैक्टर का उपयोग खासकर हम लोग हल चलाने के लिए जोतने के लिए करते हैं
10: जी।
11: तो हमारे किसान भाई बहनों को चाहिए कि ट्रैक्टर का प्रयोग जब भी करें, इनका जो इंजन ऑयल है जिसको हम लोग मोबिल भी बोलते हैं, इनका नियमित रूप से जांच करते रहें, क्योंकि यही मोबिल मशीन का पूरा जान होता है।
10: बिल्कुल
11: हाँ। उसके बाद अगर पावर ट्रिलर का भी आप अगर उपयोग करते हैं, बहुत सारे किसान भाई बहन आजकल पावर ट्रिलर का भी गांव देहात में इसका प्रयोग कर रहे हैं खेती बाड़ी में। जो छोटे किसान है ये उनके पहुंच के बाहर ट्रैक्टर होता है, इसलिए वो लोग भी पावर ट्रिलर का प्रयोग करते हैं। बहुत जो जगह देखते हैं कि जो बहुत सारे महिला समिति या फिर किसान समूह है, इनको भी सरकार की तरह से पावर ट्रिलर प्रदान किया गया है।
10: अच्छा।
11: तो पावर ट्रिलर चलाने के लिए, क्योंकि इसमें पावर ट्रिलर में दो ही चक्का होता
10: है। अच्छा।
11: तो उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग थोड़ा सा करके चलाना पड़ता है खेत में
10: जी।
11: तो किसान भाई उस बात पर ध्यान रखेंगे और ताकि उसमें पलटने का
12: थोड़ा सा डर रहता है।
10: जी, कृषि कार्य करने से पहले यंत्रों की जांच किस तरह से करनी चाहिए?
12: सबसे पहले तो जैसे अगर आप पंप सेट का बात करें तो उसका नट बोल्ट हुआ, इसके बाद मोबिल का जांच कर लिया जाता है, और पंप सेट में एयर क्लीनर होता है, इसका भी साफ सफाई करके फिर आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं खेती में। और जैसे कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर में खासकर इसको ट्रैक्टर में पीछे जोड़ा जाता है
10: जी।
12: और किसान भाई बहन इसका प्रयोग जहाँ पे मिट्टी टाइट होता है, कड़ी मिट्टी होती है, इसको तोड़ने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए और गहरी जुताई के लिए करते हैं इसका प्रयोग। और जैसे रोटोवेटर है, इसका प्रयोग खासकर बुआई के समय किया जाता है, बुआई से पहले।
10: अच्छा।
12: मान लीजिए आपका खेत में कोई खरपतवार है या फिर जैसे गन्ना हुआ, इस सब का कुछ भूसा वगैरह हुआ, तो इसको मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत अच्छा से वो होता है, इसलिए इसका प्रयोग उसमें करते हैं।
10: जी, बिना जांच के कृषि कार्य नहीं करना चाहिए।
12: जी नहीं, अगर यंत्रों का बात करें तो एक तरह से ठीक है, वो आपका निजी वस्तु है, लेकिन वो भी एक जीवित वस्तु की जैसा ही है, वो भी चलता है, उसको भी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी आपको वो मशीन चलेगी।
10: बिल्कुल, यंत्रों के उपयोग में किसान भाई बहन स्वयं में किस तरह की सावधानी बरत सकते हैं?
12: स्वयं में जैसे कल्टीवेटर हुआ, ट्रैक्टर हुआ, रोटोवेटर हुआ, इस टाइप की अगर कोई मशीन किसान भाई बहन उपयोग में करते हैं तो उससे पहले जो भी होता है कि हाथ में कृषि का एक अलग तरह के एक दास्तान आते हैं
10: जी।
12: वो दास्तान पहन सकते हैं, और विशेष इस तरह का कुछ नहीं है, दास्तान पहने जैसे पैर में जूता हो तो और बेहतर है, कृषि जूते भी आते हैं।
10: अच्छा।
12: हाँ, चोट लगने की संभावना बहुत कम रहती है, और मशीन का प्रयोग अगर हमारे किसान भाई बहन सावधानी से करें तो दुर्घटनाएं बहुत कम ही होती
10: है। बिल्कुल
12: जी। और कीटनाशक दवाई का अगर छिड़काव करते हैं किसान अपने खेती में तो चश्मे और मास्क का प्रयोग जरूर करें, साथ ही हवा का दिशा का भी पता लगा लेना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर ही स्प्रे करना चाहिए छिड़काव। जैसे मान के चलिए हवा अगर पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो आपको पूरब की ओर मुंह करके स्प्रे नहीं करना है, पूरब से पश्चिम की ओर आपको स्प्रे कर करके आना है, ताकि जो भी हवा आप पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो स्प्रे का जो छिड़काव से जो दवाई निकलती है वो पश्चिम की ओर जाएगी, आपका नाक की ओर नहीं आएगी, तो इस तरह का ध्यान रखा जाना चाहिए।
10: कृषि कार्य समाप्ति के पश्चात कृषि यंत्रों का रखरखाव कैसे करना चाहिए?
12: कृषि हम लोग का व्यवसाय का मुख्य साधन भी है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, तो किसान भाई बहनों को भी चाहिए कि अपना कृषि यंत्र जो भी है का रखरखाव सही तरीके से करें
10: जी।
12: और रखरखाव में कृषि कार्य अगर समाप्त हो गई है, अब मशीन को कुछ दिन के लिए घर में रखना है कृषि यंत्र को, तो उसको अच्छा से धो के साफ सफाई करके रखना चाहिए, और जरूरत पड़े तो कुछ सामान, कुछ कल पुर्जे मशीन की होती है वो किसान भाई बहन चलाते समय इनको अंदाज हो जाता है कि ये सही से काम नहीं कर रही है, तो इस तरह की कुछ चीजों को वो अपना बदल सकते हैं, बदल के साफ सफाई करके तो किसी छाया में, कोई शेड हो या कोई घर हो उस टाइप का, तो वहां पे रख सकते हैं। और मान लीजिए इस चीज का व्यवस्था नहीं है, शेड का व्यवस्था नहीं है, तो मशीन में जो एयर क्लीनर होता है इसको किसान भाई ढक के रखें, कभी बारिश हो तो उसमें पानी ना आए। सबसे अच्छा उपाय होता है कि तिरपाल से ढक दें पूरा को
10: जी, इससे मशीन सुरक्षित रहेंगे,
12: सुरक्षित रहेंगी, जंग लगने की कोई संभावना नहीं रहेगी। एयर क्लीनर को अगर हम लोग नहीं ढकते हैं तो पानी सीधे पिस्टन पे जाता है जिससे इंजन में खराबी आ जाती है।
10: अच्छा।
12: किसान भाई बहनों को चाहिए कि इंजन चलाते हैं तो चलाने से पहले मोबिल को जांच कर लेना चाहिए, उसमें एक चिन्हित किया जाता है कि इतना एक मात्रा होता है मोबिल का भी, इतना होना चाहिए इंजन, उससे कम में किसान भाई बहन मशीन का प्रयोग ना करें, ज्यादा अच्छा है। एयर क्लीनर को, साइलेंसर को समय समय से 3 से 4 माह में एक बार जरूर साफ करें उसको।
10: आज वर्तमान समय में कृषि यंत्र किसान भाई बहनों के लिए किस तरह से लाभकारी है?
12: आज वर्तमान समय में कृषि यंत्र जो आधुनिक कृषि यंत्र आ रहे
10: जी,
12: ये काफी लाभप्रद है, जो हम लोग पारंपरिक कृषि यंत्र का प्रयोग करते थे उसके मुकाबले ये इसमें कम खर्चा भी होता है, समय की भी बचत होती है और इसमें मुनाफा भी ज्यादा होता है। जहाँ पे आपको समय की कम लगा और मेहनत कम लगा तो मुनाफा निश्चित है आपको ज्यादा होगा
10: जी।
12: तो पहले जैसे हम लोग पारंपरिक हल से जुताई करते थे
10: जी,
12: और हल में 1 घंटा में जितना हम जोत सकते हैं वही अगर हम पावर ट्रिलर का प्रयोग करते हैं किसान भाई बहन, तो उससे कई गुना ज्यादा ये जोत सकते हैं उसमें, और मिट्टी भी अच्छी बनती है, भरभूरी बनती है और खेती भी बहुत अच्छी तरह से हो सकती है उसमें।
10: बिल्कुल। अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
12: अंत में मैं किसान भाई बहनों को यही संदेश देना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो भी खेती बाड़ी हम कर रहे हैं आधुनिक पद्धति से कर रहे हैं और पारंपरिक खेती बाड़ी को छोड़ के आज हम हल बैल के जगह ट्रैक्टर हुआ, पावर टिलर हुआ आदि का उपयोग कर रहे हैं और जितने भी कृषि यंत्र चाहे वो पंप सेट हो, ट्रैक्टर हो, पावर टिलर हो या कीटनाशक छिड़काव की मशीन हो, इन सभी यंत्रों का इस्तेमाल करने के बाद में कृषि यंत्रों के रखरखाव को ध्यान दें ताकि भविष्य में हमारा कोई भी कृषि कार्य बाधित ना हो और जो भी कृषि आप करना चाहते हैं तो कम पानी में इसकी कैसे सिंचाई हो इसकी हम व्यवस्था करें, क्योंकि जल है तो कल है। पानी का उपयोग हम एक संरक्षित रूप में इस्तेमाल करें और कौन कौन से फसल की खेती हम कम पानी में कर सकते हैं इस पर इस बात पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर हो। यही संदेश हम अपने सभी किसान भाई बहनों को देना चाहेंगे।
13: कृषि यंत्रों का रखरखाव, इस विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए हम आपका पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जोहार।
12: जी धन्यवाद।
0: इस जानकारी के बाद आइए अब हम सुनते हैं यह संदेश।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
1: अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
1: बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
3: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
4: मौसम और जलवायु, यह यूनेस्को का संदेश है। क्या आपने कभी सोचा है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? आइए हम मौसम और जलवायु के बीच अंतर के बारे में जानते हैं। मौसम होता है रोजमर्रा की स्थिति, जैसे आज बारिश हो रही है या कल धूप निकलेगी। लेकिन जलवायु का दायरा बड़ा होता है। यह 30 सालों में मौसम का सामान्य स्तर होता है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम रजनीगंधा का। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुला ठेकेदार नशीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, राउ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म श्री 420 का ये नगमा, आवाज़ें मुकेश की है।

अगली फरमाइश आप सबों की है, सुनना चाहा है ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली पसंद आप सबों की सुनना चाहे बड़ा बम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्याम देवनायक, पूजा और सीमा, ग्राम गेलियालोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश बनमाली, बेशरा अन्नू, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मोहरा का ये नगमा, आवाज़ें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: अगली फरमाइश आप सबों की है। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार झजोरिया, गीता रानी झजोरिया, गगनदीप झजोरिया, बेबी आरजू झजोरिया, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म नदिया के पार। इस फिल्म का गाना, आवाजें हैं जसपाल सिंह और हेमलता की।

अगली फरमाइश है, न्यू कॉलोनी निमरी चाईवासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, खुशबू, खुशी, अभिषेक, अनीश, अंबिका, अंकित, अमित, मनीष, मुन्ना। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना, आवाज़ें किशोर कुमार की है।

अगली फरमाइश है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतंग बीरक और मीका बीरक की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बड़ी बहन का यह नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और प्रेम लता की।

अगली फरमाइश शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म घर द्वार का ये नगमा। आवाज़ हैं सुरेश वाडेकर, पूर्णिमा और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे ये अगला गीत। खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी, जयमणि और जयंती, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

इस गीत के साथ ही श्रोता हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ से। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है

0: 47 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
0: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
0: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
1: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
4: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
6: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके दिखाया।
5: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
7: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
5: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
8: I think close to 8 cargo planes have arrived.
9: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
8: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत

0: में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India, distributes more than 51,000 appointment letters at 20th Rozgar Mela. Railway approves provision of coverage version 4.0 on 607.7 route kilometers of Lucknow division, also gives nod to construction of four-lane road overbridge on Udna Ukai Songarh section of Western Railway. 2-day Northeast Education Conclave 2026 concludes in Nagaland, focuses on implementation of National Education Policy 2020. Nepalese Finance Minister Dr. Swarnim Wagle calls for renewed India-Nepal partnership. Heavy rainfall likely over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana tomorrow. And 20th Asian Games officially open in Japan. Double Olympic medalist Manu Bhakar and Kabaddi player Pawan Sehrawat lead India's 501-member contingent during athletes' parade. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Speaking on the occasion, Mr. Modi emphasized the pivotal role of youth in building a developed and self-reliant India. He said in recent years, the central government has consistently focused on equipping the youth with skills and opportunities needed to prepare for the future.
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: Prime Minister Modi said the government is also working to rapidly expand employment opportunities in the private sector. He said with this objective, the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana has been launched with an outlay of around 1 lakh crore rupees. The scheme is expected to enable nearly 2 crore young people to enter the workforce for the first time. The Prime Minister said India has signed free trade agreements with nearly 40 countries in the past few years, which is opening new doors of opportunity for the country's youth. He said such trade agreements pave the way for new

0: किए जाने के बाद शुरुआत हो गई है। 2 घंटे की तकरीब में जापान के शाही कुनबे, खेलों से मुतालिक अहदेदारान और ओलंपिक की एशियाई काउंसिल के सदर शेख जुआन बिन हमद अल सानी ने शिरकत की। 501 मेंबरान पर मुश्तमिल भारतीय दस्ते की क्यादत 2 मरतबा ओलंपिक मेडल जीत चुकी मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जापान में एशियन गेम्स के आगाज के बाद भारतीय खिलाड़ियों को अपनी नए ख्वाहिशात पेश की हैं। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि हर एथलीट ने बेपनाह मेहनत की और लगन और अज़्म का मुजाहरा किया है और भारत उन पर फख्र करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एथलीट्स गेम्स में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की याफ्ता और खुद कफील भारत की तामीर में नौजवानों के अहम रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा तकर्रुरनामे तकसीम किए। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 600 किलोमीटर से ज्यादा के रूट पर कवच निजाम के चौथे मरहले के बंदोबस्त को मंजूरी दे दी है। मगरबी रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ सेक्शन पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज की तामीर को भी मंजूरी दी गई है। 2 रोजा शुमाल मशरकी तालीमी कॉन्क्लेव 2026 नागालैंड में अख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। नेपाल के वजीर खजाना डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को फिर से मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया है। अंडमान निकोबार जजायर साहिली आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तेज बारिश का इम्कान है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इसे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन, जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंद किशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियसामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्म युगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्म युगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट 2 के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जीवी प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म आंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
3: ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಯೋಗ್ಯ.
0: ಆಪ್ಕೋ ಬತಾ ದೇ, ಅನಂತ ನಾಗ್ ಕಾ ಜನ್ಮ 4 ಸಿತಂಬರ್ 1948 ಕೋ ಹುವಾ ಥಾ. ಉನ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಅನಂತ ನಾಗರ್ ಕಟ್ಟೆ. ಯೂಂ ತೋ ಅನಂತ ನಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮೋ ಕೆ ಅಭಿನೇತಾ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ಜಾನೆ ಜಾತೆ ಹೈ, ಪರ್ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯೇ ಬತಾ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ವೋ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ ಔರ್ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಫಿಲ್ಮೋ ಮೇ ನಜರ್ ಆ ಚುಕೆ ಹೈ.
4: ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ಕುಚ್ ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ?
5: पता चल गया तुझे वो कहाँ है?
4: नहीं मालूम कहाँ गया, माटी मिला
5: मालूम नहीं, वापिस आएगा भी या नहीं?
0: उन्होंने अपने लंबे

0: करियर में तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है, चाहे वो रंगमंच हो, सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म KGF में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
1: गरुड़न नोड़ रॉकेट कन्फर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। अदक्के अवकाश इद्रु अवनन मुगसाकलिल्ल।
0: अनंत नाग ने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद इंगलागी का किरदार निभाया था। दरअसल ये किरदार फिल्म का सूत्रधार भी है। हिंदी में अनंतनाग अंकुर, भूमिका, कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
2: हंस क्यों रहे?
3: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिसालदार के नगर पोते मीर रोशन अली में।
2: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ, सुनिए मेरी बात।
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुई तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर। निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी। कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई। ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: क्या नाम है तेरा? कमली। कमली, बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?

0: गई।
1: चल तू इधर रोज आती है।
2: हाँ।
1: कल आना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
2: अच्छा मैं जाऊँ, बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
1: संभल के जाना। कमली गल सुन,
2: क्या
1: तेरी कुमाई हो गई?
3: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बी.आर. चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर, और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वर नाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: एक बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा?
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पॉकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
4: क्या हुआ?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
4: खेल रहे हैं?
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ। इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
4: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
4: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा, साल था 1974।
5: यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में।
0: कमलेश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
6: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। ये था विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए, संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 2 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: फिल्म इजाजत के लिए।
1: मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा।
0: साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा अरे ये दिना की लड़की है। ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों में दिल लेने, इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त, वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते

0: उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण,
1: जरूर
0: राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताओ, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा, छोटा सा तालाब को
1: जी
0: बड़ा दिखाते थे, तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे। पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत थी 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरीली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती।
1: जी
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम
1: जी
0: हो, पलंग हो, उस इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए,
1: जी
0: एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहां आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती हूँ, क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने
1: क्या
0: वाली औरत
1: बात
0: हूँ, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता है।
1: जी
0: फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर

0: Smriti Sheesh. स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।

इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी संगीत रसिकों का हार्दिक स्वागत है। इसमें आज हम आपको श्री एस हरिकुमार का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटक वायलिन रिसाइटल बाय श्री एस हरिकुमार।
0: श्री एस हरिकुमार केरल के एक प्रख्यात संगीतकार हैं, जिन्होंने कर्नाटक, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में अपनी विशेष पहचान बनाई है। सन 1980 में जन्मे आप 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से वायलिन वादन सीखने लगे और 9 साल की आयु में आपने अपनी प्रथम प्रस्तुति दी।
2: हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
3: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है
2: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
3: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहाँ एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास किया।
2: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
3: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के 3 कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने

0: सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
1: To each and every one of you, the entire continent is behind you. Give everything you have, hold nothing back. The impact of what you achieve here will stretch far beyond any medals or performances. Throughout our continent, across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved when you push the limits of human potential, and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
0: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली। एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
0: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह

0: फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसीलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरनी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता, लेकिन कमाल की बात ये रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ चेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
2: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूँगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा जापान और साउथ कोरिया इवन पाकिस्तान इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
1: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है।

0: देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है, ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशु से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशु में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशु की। वुशु के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे, इन्हीं में वुशु भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशु के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशु की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशु अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंध सिकाई चेतन से होगा।
0: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज आप सुन रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गजल।

इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz से, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म पवित्र पापी से, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अभी आपने सुना फिल्म सफ़र का ये गाना, आवाज़ें थी किशोर कुमार की। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म बचपन का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नागालैंड के चुमोकेमिटा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की। ये सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियों और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और